FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: मानव जब संसार में जन्म लेता है उसके पूर्व ही उसकी किस्मत सुनिश्चित होती है, उसका भाग्य लिखा जा चुका होता है। वो इस संसार में आके अपने कर्मों के द्वारा उसके प्रतिफल को सुनिश्चित करता है। इसीलिए हे प्राणी, तू स्वयं पर अभिमान न कर, बस सत्कर्म कर और उसका फल प्रभु पर छोड़ दे। वो सब देख रहा है, वो अवश्य ही तेरे सत्कर्मों का फल तुझे देगा।
1: हर दिन हर पल हर चिन हो कण कण में भाई, पग पग हर दिन हर पल हर चिन हो कण कण में भाई, पग पग हर दिन हर पल।

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर और हरिओम शरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार विकृतियां। आलेख और वाचन विमल अरोड़ा का है।
1: समस्त विकृतियों, कुंठाओं, शोक

0: संताप, द्वंद्व, संघर्षों, अभाव, अपराधों और रोगों का एकमात्र कारण हमारे चिंतन क्रम का कलुषित हो जाना है। दुष्ट चिंतन समस्त विग्रहों का मूल है। सारी विपत्तियां दुर्बुद्धि ही उत्पन्न करती है। अवांछनीय विचार पद्धति ही है जो नरक की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। समस्त सुविधाएं होने पर भी यदि विचार पद्धति सही नहीं है तो व्यक्ति केवल दुख पाता रहेगा और संबंधित लोगों को दुख देता रहेगा। हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विपन्नताओं का कारण और कुछ नहीं, केवल लोक मानस की अशुद्ध दिशा ही है। यदि मूल के कारणों को न सुधारा गया तो सुधारों के समस्त प्रयत्न जड़ सूखी जाने वाले पेड़ के पत्ते सींचने जैसी विडंबना सिद्ध होंगी। इसलिए यदि वस्तुतः वर्तमान विपन्नताओं का समाधान ढूंढना हो तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि संसार की, विशेषतः भारत की चिंतन पद्धति को परिष्कृत करना आवश्यक है। नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान केवल इसी एक आधार पर संभव है। विश्व शांति का उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। एक सर्वतोमुखी विचार क्रांति इस युग की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। इसे चाहे आज संपन्न किया जाए, चाहे हजार वर्ष बाद, रास्ता इसके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। आज हम परंपराओं, मूल विश्वासों, दुराग्रहों और अन्य अनुकरणों को अपनाकर अपनी जीवन दिशा निर्धारित करते हैं। यदि विवेक और औचित्य की कसौटी माने तो तीन चौथाई मान्यताएं और रीति नीतियां बदलने एवं सुधारने को विवश होना पड़ेगा। इस विवशता को स्वेच्छानुसार सुधार की प्रक्रिया में परिणत कर देने वाले प्रचंड प्रयास को विचार क्रांति कहा जा सकता है। नाम जो भी हो, नारकीय वर्तमान परिस्थितियों को भावी सतयुग के रूप में बदलने का उपाय केवल यही एक है। इसी ज्ञान गंगा का अवतरण करने के लिए भागीरथ प्रयत्नों की आवश्यकता है।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, विकृतियां। वाचन कर रही थी विमल अरोड़ा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

नस्कान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर रविंद्र साठे का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का। संध्या 5:10 होगी प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अब से थोड़े ही देर में यानी कि 6:50 का समय रहेगा खेती की बातों का। विषय होगा मृदा स्वास्थ्य एवं सॉइल हेल्थ कार्ड। प्रातः 7:00 आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। प्रातः 8:30 पर होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9:00 हिंदी वार्ता के अंतर्गत सुनिएगा छत्र छाया क्रम में वार्ता, पारिवारिक संबंधों एवं संस्कारों पर बातचीत। प्रातः 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। प्रातः 10:30 पर लीजिए फिर सुनिए, इस क्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रूपक मोहे डीग नगरिया भाई रे। आलेख अजय कुमार संतोष का होगा, प्रस्तुति रहेगी श्री कृष्ण शरद की। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS हम आपके लिए लेकर आएंगे 12:00। गौरी शंकर पाराशर के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे 12:30 से। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन।

संध्या 5:10 से शुरू होगी दूसरी सभा। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात होगी महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर। साथ ही आनंद लेंगे फिल्मी गीतों के का। संध्या 6:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा खरीफ फसलों में उन्नत बीजों का महत्व और खेत बचाओ अभियान में किसानों की भूमिका। साथ ही सुनिएगा वार्ता बकरी पालन व्यवसाय कितना उपयोगी, डॉक्टर एके गोयल देंगे इस विषय पर जानकारी। खेती के 5 तत्वों का फसल के लिए रख रखाव, ये जानकारी देंगे डॉक्टर रविन्द्र कुमार राजपूत। इनसे भेंट करेंगे दीपक कुमार गोस्वामी। संध्या 6:45 पर होगा कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कथा बाल लीला की। कथाकार होंगे दीपक शर्मा। संध्या 7:31 पर होगा श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:30 से। रात्रि 9:15 पर होंगे सुहाने तराने। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

किसान भाइयों, आज हम मृदा स्वास्थ्य और सॉयल हेल्थ कार्ड विषय पर जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य आखिर है क्या। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का मिला जुला प्रभाव जो कि उत्पादकता के रूप में परिलक्षित होता है, उसे मृदा स्वास्थ्य कहते हैं। भूमि की उर्वरता जांचने तथा संतुलित एवं सूक्ष्म उर्वरक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए मृदा जांच अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अधिकांश कृषक भाई अपने खेतों में उर्वरकों का उपयोग कमी के आधार पर नहीं बल्कि बाजार की उपलब्धता एवं अपनी क्रय शक्ति के आधार पर करते हैं। मृदा जांच के द्वारा इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। मृदा का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता, कार्बनिक पदार्थों तथा किसी फसल के लिए भूमि की उपयुक्तता का भी पता चलता है। आज के बदले परिवेश में जहां एक तरफ कृषि उत्पादन में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन भी आवश्यक हो गया है। मृदा परीक्षण के द्वारा उर्वरकता का मूल्यांकन एवं पोषण

0: में वृद्धि अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन भी आवश्यक हो गया है। मृदा परीक्षण के द्वारा उर्वरकता का मूल्यांकन एवं पोषण संबंधी समस्या का आकलन किया जाता है। मृदा के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में मृदा का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्षरण तथा मृदा प्रदूषण प्रमुख है। मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग के अतिरिक्त मृदा की कार्बनिक स्तर को सुधारना भी अति आवश्यक है, जो कि मिट्टी में जैविक पदार्थों के समावेश द्वारा ही संभव है। इसकी निहायत कमी आजकल महसूस की जा रही है। लगातार सघन खेती, कार्बनिक अंश की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है। मिट्टी में बहुपोषण तत्वों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जल धारण क्षमता में कमी आदि के कारण इसका प्रबंधन जरूरी हो गया है। अब बात आती है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं तथा सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड में सिफारिश अनुसार बुवाई की जाने वाली फसल में देसी खाद व उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग करें, सही तरीके से सिफारिश के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसके लिए अपने खेत को जानें, उसकी परिस्थिति को पहचानें। खेत में समय समय पर भ्रमण करें, उपजाऊ मिट्टी का कटाव रोकें, मृदा संरक्षण करें। फसल चक्र में दलहनी फसलों को महत्व दें, वर्ष में कम से कम एक दलहनी फसल अवश्य लें। खेत को यथासंभव समतल रखें, मिट्टी को भुरभुरा रखें, ढेले तोड़ें तथा मिट्टी को कठोर होने से बचाएं। 3 वर्ष में एक बार ढेंचा की हरी खाद करें। खेत पर ही कंपोस्ट खाद बनावें। प्रत्येक तिहाई भाग देसी खाद कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट द्वारा ही प्रदान करें। जीवाणु कल्चर से बीजोपचार करें। फसल अवशेषों को नहीं जलाएं, बल्कि खेत में ही दबाकर गलाएं। गर्मियों में खेत की जुताई करें। जुताई सुबह के समय व ढाल के विपरीत करें। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई देसी हल या हैरो से काट कर पाटा लगवाएं। वर्षा के जल को खेत में ही संरक्षित करें। नमी संरक्षण हेतु मिट्टी की ऊपरी पपड़ी तोड़ें तथा समय पर निराई गुड़ाई करें। फसलों को संतुलित पोषण दें। पोषक तत्वों का 1/3 भाग देसी खाद या कंपोस्ट तथा शेष उर्वरकों द्वारा देने पर ही पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत नमूनों की जाँच तथा कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण निशुल्क किया जा रहा है, अतः मिट्टी की जांच कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवावें एवं सिफारिश अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग कर उत्पादन व गुणवत्ता दोनों बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातों के अंतर्गत जानकारी, मृदा स्वास्थ्य एवं सॉइल हेल्थ कार्ड। जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म एक थी लड़की में। शब्द रचना आजिज कश्मीरी की थी, संगीत दिया था विनोद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दिल ही तो है, स्वर मुकेश का है, शब्द साहिर लुधियानवी के, संगीत रोशन का है।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, थोड़ा भी नहीं,
1: नहीं
2: झूठा भी नहीं,
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

किशोर कुमार और उषा खन्ना को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। शब्द इंदिवर के थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। अब प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य

0: सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो

0: मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की कर्बला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
2: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए। ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और कर्बला पहुंचकर ताजियों को कर्बला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एम FM 102.2 MHz पर।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं परकम माते। ये पाक्षिक विवरण हमारे ताई लेके आ रहे हैं विनोद चतुर्वेदी। तो आओ भैया सुनाया पाक्षिक विवरण को।
1: अति झीनो मृणाल को तार हो तो ताहू पे पामे दे जामिनो है, प्रेम को पंथ अनोखो अली तलवार की धार लो धामिनो है। जैसे कि कहो जाए है हमारे सनातन धर्म में वैदिक परंपरा में 8 बार और 9 त्योहार की भावना है। पिछले पखवाड़े में अभी आपने मलमास जाकू अधिक मास भी कहें और पुरुषोत्तम मास भी कहे हैं। आस्था को ऐसो ज्वार उमड़ो कि ब्रजमंडल में हमारी कान्हा की लीला स्थली गोवर्धन में करोड़ों लोगों ने गिरिराज की परिक्रमा को दयो और राधे राधे जय श्री कृष्ण के जय घोष के संग ही या पुरुषोत्तम महीना में भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि यानी ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा हु लगाई गई। जगह जगह गामन में परिक्रमार्थिन के ताई भंडारे लगाए गए जिनमें इनकी हर व्यवस्था सुख सुविधा को ध्यान रखो गयो। भैया पुरुषोत्तम महीना को मतलब ये है कि 12 महीनान को वैदिक परंपरान के अनुसार देवतान ने सवन ने एक एक महीना को ले लियो। तिथि क्षय के कारण जो 13वां महीना बन्यो बाकू काऊ ने लेवे को जिम्मेदारी ना लई और वो 12 महीनान को मल मास नाम दियो गयो। अब ऐसे गंदगी के नाम को कौन ग्रहण करे तो वो मलमास रोतो भयो नारद जी के पास गयो और नारद जी ने वासु कही कि भैया या शंका को तेरी को समाधान तो ब्रज के जो नायक हैं वो कृष्ण कन्हैया ही कर सके हैं। मलमास भगवान कृष्ण के पास में आयो और आयकर के वाने प्रार्थना करी तो कन्हैया ने कही कोई चिंता करने की जरूरत ना है, आज ते मैं तेरा स्वामी और तुम्हें किए भय जितने भी कार्य हैं वे अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाले होंगे और मैं तो हूँ आज ते अपनो नाम दे रहे हूँ याले या मलमास को नाम कहो गयो पुरुषोत्तम मास। और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद देवे की कारण ही या महीना में जो भी कार्य कियो गयो धर्म यम नियम संयम पुण्य दान जो कछु भी करो गयो वाको अनंत फल यानी सहस्त्र गुणों फल प्राप्त भयो। या लिए तो या को नाम पुरुषोत्तम महीना है और यही वजह सो या में 84 कोस की गाम गाम ते लागन लोगन ने परिक्रमा हु करी। या जेठ की दोपहरिया में जा में सूरज अपनी बहुत ही यौवन पे हुए है और भयंकर ताप वामे नंगे पैर

चलते भाई पैरन में छाले पड़ गए। ऐसे हूँ लोग ही, ऐसे हूँ धर्म परायण लोग ही कि अपने माता पितान को, अपने सास ससुरन को कंधान पे और माथे पे बिठाए करके मैंने ब्रज की परिक्रमा करी। या के संग ही संग ब्रजांचल में गिरिराज की परिक्रमा हूँ लगाई गई और मथुरा वृंदावन बरसाना कामवन जगह जगह वहाँ की जो लोकल परिक्रमा है विनको भी लगाया गया। पुरुषोत्तम महीना के अंत में सोमवती अमावस्या आई। सोमवती अमावस्या सनातन धर्म में यह अमावस्या को संयोजन सोमवार के दिन जादना हुए यह बहुत ही दुर्लभ संयोग कहो जाए है। और यह दुर्लभ संयोग में तरह तरह की जो पाठ पूजा विशेष अर्चना है तो या में अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होए और यह अक्षय पुण्य फल या लिए लगाया जाए कि जाते कि मानव जीवन में जाने अनजाने जो करे भाई पाप हैं वो दान पुण्य भगवान की भक्ति और आराधना करवे थे विन पापंती मुक्ति मिल जाए है। और मुक्ति के कारण ही, मुक्ति की याचना के कारण ही अपन परिक्रमा करे हैं और परिक्रमा करवे थे ही हमारे पापन को समन हुए है।

परिक्रमा देवी के संग ही संग या हमारे ब्रजमंडल में कहें कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अटखेलियां या ब्रजभूमि में भई। भगवान ने यहां अवतार धारण करके मथुरा की भूमि में या ब्रज की धरा को धन्य बनायो और अपनी आह्लादनी शक्ति राधा के संग पग पग पे यहां पे लीला करी। बालकेलोचित लीलान के संग ही संग बड़े बड़े असुरन को संहार कियो। बाकी संग ही संग माखन चोरी की लीला, हास परिहास रास महारास जल विहार अनेकन प्रकार की ब्रज की धरा पे लीला करी। तभी तो कहें कि ब्रज की भूमि में या कि रज की महिमा इतेक है कि जहां स्वामिनी जी पग धर रही हैं वहां कृष्ण बुहारी कर रहे हैं। कहें अलवेली नागर जहां धरत चरण छवि छुंज, पलकन की कर सोहनी देत कुमर तेहि कुंज। और याई के लें ये आस्था को ज्वार हमारे ब्रज में अनेकन जगह इन पे चाहे वृंदावन के बांके बिहारी हों या मथुरा में द्वारिकाधीश लाखन की संख्या में लोगन ने दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित कियो। बरसाने को राधा रानी मंदिर हो या नंदगाम को नंद भवन या काममन में गोकुल चंद्रमा जी हो, हर जगह पे आपको भीड़ ही भीड़ या पुरुषोत्तम महीना में दिखाई पड़े है। भैयाओ या ब्रज में कहें कि ये तीन लोक ते प्यारो है और तीन लोक ते न्यारो है। यहाँ चारों धाम वास करे हैं कृष्ण की कृपा ते, तो यहाँ की परिक्रमा कर बेते चारों धाम की परिक्रमा को हु फल प्राप्त हुए। संग ही संग कृष्ण लीलान के संग यहाँ हमारे जो पिछले 15 दिन में अनेकन प्रकार के उत्सव और जन्म मनाए गए, जिनमें महाराणा प्रताप जिनने या भूमि को एक नाम दियो कहें परम देश भक्तस्य सिसोदिया कुलभूषणस्य महाराणा प्रतापस्य नाम को न जाना थी। महाराणा प्रताप के नाम को कौन नहीं जाने भैया। यही पिछले दिनन में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई गई और सिख गुरु अर्जुन देव को हूँ बलिदान दिवस यही पिछले दिनन में मनायो गयो। कौन नहीं जाने कि महाराणा प्रताप ने या धरा पे अपनी राष्ट्र के लाइन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी तक खाई। ऐसे ही गुरु अर्जुन देव ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। तो कहवे को मतलब ये है कि भैया ये भूमि भारत की भूमि हमारी नित्य नए त्योहार और संत महंत आचार्यन के आशीर्वाद से पल्लवित और पुष्पित होती रही है। सिंधी समाज में संत टेऊराम महाराज उभय जिनने किया समाज को आगे बढ़वे को मार्ग प्रशस्त कियो। अपने वचनंते बिनने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनकी ये समाज हो आगे निरंतर वृद्धि कर रहे हो है।

0: हार।
1: प्रेम को संदेश पिय की देन है, प्रेम बिन प्रेमी सदा बेचैन है। ब्रह्म जो तेरो हमारो मीत है, रास में नाचे चरावे धेनु है। ऐसी विलक्षण ये ब्रज की धरा पे ब्रज गोपिकान के संग में अटकेली हमारे कन्हैया ने करी, और यह ब्रज की बात के संग ही संग या ही पक्ष में हमारे भारत को जो स्वर्ग कहो जाए, कश्मीर में हूँ क्षीर भवानी को बहुत ही बड़ो उत्सव मनायो गयो। संग ही संग भैया आप जानो हो कि गंगा दशहरा यानी सूर्य कुल के महाराजा सगर जिनने यज्ञ को अनुष्ठान कियो और अश्वमेघ यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ दियो, घोड़ा पृथ्वी पे विचरण करतो भयो फिर रहो हो, इंद्र को लगयो कि अगर ये अश्वमेघ यज्ञ महाराजा सगर को पूर्ण है गयो, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को इंद्रासन प्राप्त है जाए है। इंद्र को लगयो कि मेरा इंद्रासन चलो जाएगो, वाने वा अश्व को चुराए के गंगा सागर पे समुद्र के किनारे कपिल मुनि भगवान के आश्रम में बांध दियो। सगर पुत्र राज मद में झूमते भये, पृथ्वी पे घूमते घूमते भगवान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जो पहले थे ही समाधिष्ठ बैठे भये। भगवान ते आत्मा और परमात्मा योगाकार ते मिलन कर रहे हैं, वही समय पहुंच करके अनर्गल प्रलाप किए। भगवान कपिल की नेत्र खुले और विनकी नेत्र ज्योति में सगर पुत्र भस्म है गए। राजा सगर को सूचना मिली तो विन ने अपने दूसरे पुत्र को भेजो और जाय करके वहां ने प्रार्थना करी। तब विन ने कही कि तुम्हारे वंश में अगर कोई गंगा जी को पृथ्वी पे ले आवे तो इनको उद्धार है जाए। वो बस गंगा जी को धरा पे उतरबे को सूत्र यहीं ते प्राप्त भयो, और सभी लोगों ने तप किए। महाराज दिलीप तक सबने प्रयास किए, लेकिन गंगा जी को कहूं भी अवतरण नहीं भयो। ये श्रेय महाराज भगीरथ को प्राप्त भयो, जिनने अपनी तपस्या ते गंगा जी को प्रसन्न कियो। गंगा जी ने स्वयं अभिमान के बसीभूति करके भगीरथ जी ते कही कि भैया मैं पृथ्वी पे तो आ जाऊं, लेकिन मेरे बेग को कोई सहन नहीं कर सके। अगर वह बेग को सहन करवे वारो कोई मिल जाए तो मैं पृथ्वी पे तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ति के ताई आ जाऊंगी। भगीरथ ने विचार कियो कि या के बेग को सहन करवे के लिए तो देवादिदेव ही सक्षम है। विन ने महादेव की तपस्या करके विन को प्रसन्न कियो और फिर गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पे उतरवे की प्रार्थना करी। गंगा जी उतरी हैं तो महादेव की जटा में अर्ध गई। भगीरथ को मनोरथ पूर्ण नहीं भयो, पुनः महादेव की प्रार्थना करी और एक धारा विन्ने छोड़ी है तो उत्तराखंड ते कल कल निदाद करती भई, गंगा जी या पृथ्वी को अप्लावित करती भई, धन धान्य ते परिपूर्ण करती भई, हरितमा देती भई, सबके जीवन को सुखी बनामत भई। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी गंगा सागर तक पहुंच गई। आज हो निरंतर गंगा दशमी के दिना गंगा जी को जन्म मनाया जाए है, और गंगा स्नान करके लोग अपने पुण्य प्राप्त करबे की ताई और पापन के समन करबे की ताई डुबकी लगा में।

0: मथुरा में हूँ, विश्राम घाट पे लाखन लोगन ने यमुना जी में स्नान करके अपने पापन को नष्ट कियो, और अन्यान्य तीर्थ चाहे प्रयागराज हो, वहाँ संगम पे स्नान किए, और श्री यमुना जी की कृपाते ही गंगा जी को या जगत में मान प्राप्त भयो, क्योंकि गंगा जी भगवान के पैरन में ते निखरी भई हैं। हर पदी विनको नाम है, तो विनको कहूँ मान नहीं मिलो, तो यमुना जी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रदान करके प्रयागराज में विनको उच्च स्थान प्रदान करायो, या लिए गंगा हमारी पूजनीय है। पुनः गंगा जी यमुना जी से प्रार्थना करती भई, भूतल पे विचरण कर रही हैं, आज हूँ मानव जगत के पापन को धोए रही हैं और भगवान कृष्ण के हृदय में प्रीति पैदा कर रही हैं। कहें नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरा सुरई बंधित दिव्य रूपम, वो सदा ही दिव्य रूप में भूतल पे विचरण करती रहें, और या गर्मी के समय में हमारे ठाकुर जी को जल यात्रा को जलाभिषेक हो करो जाए है, नौका विहार शीतलता प्रदान करने के ताई ठाकुर जी को तरह तरह के अभिषेक किए जाए हैं। और तो और उड़ीसा में हमारे कृष्ण की जो प्रथम पटरानी रुक्ष्मणी है, इनके विवाह को उत्सव हो यही पक्ष में मनायो गयो है।
1: तो भैया अभी परिक्रमा के अंतर्गत आपने सुनो या पक्ष को विवरण, जय हमारे लिए लेके आए विनोद चतुर्वेदी। याई के संग में आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुए है संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी।

0: यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड

0: हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will

कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर में। शब्द रचना रानी मलिक की थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। बोल जावेद अख्तर के थे, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी

0: के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में अभी सुना आपने गीत। फिल्म थी राजा भैया, शब्द रचना समीर की थी, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जुल्मी से। स्वर उदित नारायण और आशा भोसले के हैं, शब्द रचना गुलशन बाबरा की है, संगीत से सजाया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में खाकी फिल्म का अभी सुना आपने एक गीत। बोल समीर के थे, संगीत दिया राम संपत ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत छत्र छाया क्रम में पारिवारिक संबंधों एवं संस्कारों पर बातचीत। साधना सारस्वत से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, भारतीय मनीषा में, भारतीय संस्कृति में परिवार की अवधारणा बड़ी व्यापक है। परिवार जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, कई सारी पीढ़ियां रहती हैं। अगर हम आज की और पुराने समय की तुलना करें तो इन परिवारों के संदर्भों में और परिवारों की इन अवधारणाओं में बहुत बड़ा अंतर आया है। आज जैसा कि आर्थिक युग है, तकनीकी का युग है, संदर्भ बहुत बदल रहे हैं, तो एक परिवार में रहने वाले लोग भी कई बार एक साथ नहीं रह पाते हैं। कहने का आशय, एक समय था जब एक परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती थी, एक केंद्रीय भूमिका होती थी, उसमें एक ही संदर्भ में पूरा परिवार जीता था। लेकिन आज एक परिवार में रहने वाले चार लोग भी अलग अलग तरह का जीवन जी रहे होते हैं, विचार के लेवल पर भी, जीविका के लेवल पर भी और उनके कार्यक्षेत्र के लेवल पर भी। तो परिवार में कैसे रहा जाए, आज के संदर्भों में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है साधना सारस्वत जी, आप गृह विज्ञान विभाग से संबंध रही आरसीए कॉलेज मथुरा में। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी, तो भारतीय संदर्भों में, भारतीय परिस्थितियों में परिवार की जो अवधारणा है उस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे जो परिवेश में यही नहीं पता कि परिवार और घर और मकान इन तीनों में क्या अंतर है।
1: जी जी जी।
2: देखिए, ईंट पत्थर और उससे बनाया हुआ मकान कहलाता है, और जिस घर की छत के नीचे, मतलब जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा घर कहलाता है।
1: जी जी।
2: जिसमें हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं।

0: होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके बाद जो हमारा परिवार बनता है उसमें रह के सम्मिलित, तो सम्मिलित परिवार के बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं।
1: जिम्मेदारियां
0: आजकल जो परिवार और जो युवा पीढ़ी है वो जिम्मेदारियों से बचना चाह रही है और सबसे बड़ी बात है कि वो पैसे के पीछे भाग रही है। पैसा, हम मानते हैं कि जीवन में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। परिवार को हमें लेके चलना है तो हमें परिवार की भावनाओं को, संस्कारों को कैसे मैनेज करना है वो सारी व्यवस्था आती है गृहिणी के ऊपर। उस घर की जो गृहिणी होगी, चाहे वो कहीं कार्यरत हो, कार्यरत होती है तो और भी अच्छे से मैनेज करती है।
1: ये आप अपने अनुभव से कह सकते हैं क्योंकि आपने इस तरह का जीवन, दोहरी भूमिका है जिसमें कॉलेज को भी देखना, परिवार को भी देखना।
0: नहीं, हम यही कहेंगे कि जो कार्यरत महिलाएं होती हैं वो वास्तव में अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है क्योंकि वो समय के साथ चलती है। घर में, मतलब हम ये नहीं कहेंगे जो महिला कार्यरत नहीं है या घर में रहती है वो अपने परिवार को अच्छे से नहीं चलाती।
1: जी जी,
0: वो भी बहुत अच्छे से चलाती है और शायद कार्यरत महिलाओं से अच्छी चलाती है, लेकिन वो एक समय से बद्धता रहती है, उनकी समयबद्ध रहती है। हमें कब नाश्ता करना है, कब अपने परिवार को मतलब भोजन कराना है, कब रात्रि का भोजन कराना है, कब चाय देनी है, कब दूध देना है, कब बच्चों को कैसे मतलब वो करना है, वो एक समयबद्धता उनके साथ में रहती है।
1: दोहरा जीवन आप खुद ही बता रही हैं कि परिवार को भी देखा, कॉलेज को भी देखा। कॉलेज में एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष होता है कि आपके साथ तो एक युवा पीढ़ी रहती है पूरा जीवन। आप भले ही 60 साल के हो जाएं लेकिन आप उस युवा पीढ़ी के साथ रहते हैं जो समाज के साथ चल रही है, समय के साथ चल रही है, जो परिवर्तनों को देख रही है, उनको जी रही है उसमें। तो आज के, जैसे आपने कहा कि एक अलग तरह का वातावरण है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोच रही है? जैसे आपने शुरू में कहा कि एक परिवार में कई पीढ़ियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, जो जिम्मेदारी संभाल रही है वो वाली पीढ़ी रहती है, तो तीन चार पीढ़ियों को मिलाकर की ही एक परिवार बनता है। आज की जो युवा पीढ़ी सोच रही है, जो आपके साथ कॉलेज भी जुड़ी, जिसको आपने शिक्षा दी, उसके नजरिए में आज भारतीय संस्कृति के जो परिवारों की अवधारणा थी उसमें कुछ परिवर्तन आया है? वो उसका देखने का नजरिया कुछ बदला है?
0: बहुत बदल गया
1: जी।
0: ऐसा है कि आज का जो युवा वर्ग है वो जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, चाहे लड़के ले लीजिए चाहे लड़कियां ले लीजिए, वो एक स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अंकुश न हो। और जो आज की जो पढ़ाई हो रही है टेक्निकली जो, तो वो ये समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे माता पिता हैं उनसे हम बहुत आगे हैं, ये इन सब चीजों से परिचित नहीं है।
1: उनको लगता है कि हमारी सोच ज्यादा एडवांस है,
0: ज्यादा
1: बेहतर,
0: और हम इनसे ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं और हम अपने बच्चों को भी इनसे, जो हमारे माँ बाप ने किया वो हम उनसे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन समय के अभाव में वो भागदौड़ वाली जिंदगी, वो कहा ना मैंने पहले कहा कि पैसे के पीछे, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जब हम अपनी एक निश्चित जगह पे पहुंच जाते हैं तब हम उसको महसूस करते हैं कि हमने कहाँ गलती कर दी।
1: जी जी, लेकिन समय तब तक बहुत आगे निकल चुका
0: है, बहुत आगे निकल चुका है।
1: अच्छा, बच्चों को सिखाने का एक तरीका जो परिवारों में होता था, जैसे कहानियों के माध्यम से, साथ रह करके, साथ जी करके, छोटी छोटी घटनाओं से हम सिखाते थे, तो आज अगर हम उस एक आजादी का जीवन जीना चाह रहे हैं, जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं, तो आगे जो हमारी पीढ़ी आ रही है जिसके लिए हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जो हमारे साथ जुड़ेगी उसमें, तो वो भी तो यही सीखेगी, फिर वो संस्कारवादी बात तो पीछे छूट जाएगी।
0: संस्कार वाली बात तो बिल्कुल पीछे छूटेगी क्योंकि हम जब तक बच्चों को समय नहीं देंगे तब तक बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? ये किताबी शिक्षा से या कंप्यूटर, मोबाइल और इनकी सबकी शिक्षा से तो बच्चे संस्कार सीखेंगे नहीं। दूसरी बात कि हमें बच्चों को सिखाने से पहले उस चीज को अपने ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज से बच्चों को रोकते हैं तो पहले हमें रुकना पड़ेगा। अगर हम अच्छे संस्कार देंगे बच्चों को तो उस अच्छाई को हमें बच्चों को दिखाना पड़ेगा,
1: मतलब जी के जो हम सिखा सकते हैं
0: जी, वो हमें दिखाना पड़ेगा बच्चों को कि हम देखिए कैसे जी रहे हैं, हम आपको वही सिखाएं कि जिस तरीके से हम जी रहे हैं।
1: जी, जी।
0: आगे आप भी अपना जीवन जियो और दूसरा जीवन आगे बच्चों को सिखाओ।
1: एक दूसरा पक्ष, जैसे आप गृह विज्ञान से जुड़ी रही, वहां तो जो पाक बनाने खाने की जो आप शिक्षा देती रही बच्चों को, ये बनाती रही, तो परिवार में जो रसोई का एक स्थान है वो बहुत बड़ा रहा है। उसमें चाहे हम बनाने के माध्यम से हो, चाहे खिलाने के माध्यम से हो, परिवार को जोड़े रखने में रसोई एक बहुत बड़ी भूमिका।

0: के उसमें रही है हमेशा, आज भी है। अगर हम स्वास्थ्य के तौर पे देखें तो आज का जो जीवन है कि चलता है, अब वो खाने के उसमें भी आ गया है। हम घर से निकले, जहां जैसा मिला खा लिया, जब जैसी भूख लगी वैसा जी लिया। तो पहले हम घर से बाहर जाते थे तो उसका भी इंतजाम करके ले जाते थे। तो आज ये रसोई का जो पक्ष छूट रहा है, आज का नया युवा वर्ग बनाना खाना नहीं चाहता उसमें, तो इससे कहीं परिवारों के संगठन पे असर पड़ा है इसमें?
1: बहुत पड़ा है। देखिए, रसोई तो हमारे जीवन का एक इतना अभिन्न अंग है कि हम उसके बिना शायद सोचे तो जी नहीं सकते।
0: मतलब परिवार की अवधारणा ही खत्म हो जाती है।
1: अवधारणा ही मतलब खत्म है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो रसोई है, रसोई में हमारा सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है।
0: जी,
1: हमारी जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी वो हैं, सबका इलाज हमारी रसोई में है।
0: क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो औषधीय गुणों वाले हैं।
1: अब क्या है कि कुछ लोग कहेंगे हम मिर्च नहीं खाएंगे, हम कहेंगे कि मतलब गरम मसाला नहीं खाएं। अरे, हमारे गरम मसाले की एक एक चीज को आप उठाइए, आपके स्वास्थ्य से सारी संबंधित है। मिर्च नहीं खाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर जो बनता है, ब्लड का फ्लो नहीं बन पाता उससे,
0: पाचकता भी नहीं बन जाती।
1: लेकिन अति तो हर चीज की बुरी होती है। देखिए, कोई भी चीज है आप व्यवस्थित करके लेंगे, आपको उससे
0: जो तो उसका प्रयोग आना चाहिए, तो
1: प्रयोग आना चाहिए तो वो औषधि है। अगर प्रयोग नहीं आता है तो वो जहर है।
0: और इस बात को हमने शायद कोरोना काल में देखा भी, जब एक ऐसा समय आया तो जब हमारी रसोई हमारे काम आई, चाहे स्वास्थ्य के हो चाहे परिवार को
1: जोड़ने के। देखिए, जो कोरोना काल आया तो उसमें परिवार को साथ में रहने का मौका मिला। साथ में रहने का मौका मिला तो बाहर का तो सब बंद हो गया, तो महिलाओं ने सीखा भी, बनाया भी, अपने परिवार को खिलाया भी।
0: मतलब बहुत कुछ वो हमें देके भी गया, अवसर भी देके गया, तो अब कहाँ लगता है कि जैसे परिवार जैसी संस्था जो हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान थी, बहुत केंद्रीय भूमिका में थी, आज कहीं वो छूट रही है। आज कहीं हमारे परिवारों में वो भाव भूमि नहीं है, वो संस्कार नहीं है, तो इसको फिर से जोड़ने संजोने की जरूरत है।
1: बिल्कुल जरूरत है। हमारे जो परिवार में जो भी कमियां आ रही हैं वो हमारे मैनेजमेंट की वजह से आ रही है।
0: मतलब तो मैनेजमेंट खराब है, इसीलिए हम जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं?
1: बिल्कुल जी जी। देखिए, हमारे जो परिवार का जो मैनेजमेंट है और हमें उसमें बड़ों का सम्मान और बच्चों को प्यार दे के ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे आगे तो हमारा मैनेजमेंट खराब हो रहा है।
0: जी जी। और कहीं एक दूसरे के हम देखें तो जैसे बच्चों को भी जरूरत है बड़ों की, बड़ों को अपने समय बिताने के लिए बच्चों की जरूरत है, तो परिवार में तीन पीढ़ियां अगर रहती हैं तो वो एक दूसरे की पूरक भी होती है। वो उससे जो संबल मिलता है वो हमें आगे जीवन के उतार चढ़ावों में बहुत बड़ी मदद करता है।
1: बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ी भूमिका है अपने जीवन में। जब से देखिए हम नौकरी लगी, हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई हमें देखो सरकारी नौकरी,
0: जीविका का साधन मिला,
1: और हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे से अच्छा मतलब उन्हें
0: संस्कार देंगे। जी।
1: उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी जब हुई कि जब हमें शिक्षण कार्य मिला, कि हमें पढ़ाने का ही कार्य मिला, और बच्चियों को जहां हमारी बालिका ही शिक्षा ग्रहण करती है, तो हमने बहुत बहुत बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए, अच्छी बातें सिखाई। ऐसा नहीं कि बालिकाएं जो अपने पथ से भटकी हुई बालिकाएं भी हमारे जीवन में आई और उनको हमने भी वापस उस जगह पहुंचाया। आज वो अपनी घर गृहस्थी के साथ बहुत खुश है, मिलती हैं जब भी।
0: तो मतलब एक मौका मिला,
1: और उसको हमने मतलब मौके को भरपूर उसका प्रयोग भी किया।
0: तो अब जैसे सेवानिवृत्ति आपकी हो गई है, अब जो दोबारा से पुनः परिवार को आप एक ज्यादा समय दे पा रही हैं, अपने बच्चों को समय उनके साथ बिता रही, तो आपको अनुभव क्या कहता है कि जो चीजें छूट रही हैं, जहां हमें मैनेजमेंट जैसे आपने कहा कि कमी है, तो उसमें अगर हम दोबारा से थोड़ा सा सोचें तो कहीं कुछ बेहतर स्थितियां बनाई जा सकती है क्या?
1: देखिए, मैंने 33 साल नौकरी करी
0: जी,
1: और उस 33 साल में मैंने इतना सीखा, मतलब सिखाने के साथ मैंने सीखा भी।
0: जी जी जी।
1: एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर समाज में कहीं स्थान बनाना चाह रहे हो तो जो आपके चेहरे पे है, जो अंदर आपके है, किसी के प्रति थोड़ा सा मतलब वो है, तो उसे चेहरे पे मत आने दो। खुश रहो। मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, लेकिन ठीक है, उसको चेहरे पे मत लाओ।
0: जी जी जी।
1: और कभी भी अपनी बहुत सारी बातें बहुत सबके साथ शेयर मत करो।
0: कुछ चीजें छुपा लेने में बेहतर है, कुछ चीजों को आगे बढ़ा देने में अच्छा है।
1: ये आपने

0: अगर सोच लिया आपने मन में कि हम इसे सुधार सकते हैं तो आप कोशिश तो करेंगे। अगर पहले ही आपने सोच लिया कि अरे जो कर रहा है करने दो, हमें क्या, लेकिन हमें क्या, हम समाज के प्राणी हैं, हमें है ना, अगर हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, उस बालिका को या युवा को, तो हम कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे घर में, चाहे आपने कार्य क्षेत्र में, चाहे कहीं भी, तो या तो उस कार्य को करो मत, और कर लिया तो फिर डरो मत, उसका सामना करिए। अपने को कमजोर क्यों मतलब साबित करते हैं? हमें अगर हमारे परिवार की जिम्मेदारी मिली है तो हम उसको जिम्मेदारी समझ के और उससे डट के मुकाबला करें।
1: यही परिवार हमको शायद संबल देता है, जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो हम सामूहिकता के साथ अगर उसके साथ जुट जाएं।
0: और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो परिवार के जो दो पहिए हैं वो अगर स्वस्थ रहेंगे और आपका सामंजस्य उनके साथ रहेगा तो आप अपने परिवार को बहुत आगे ले जाएंगे।
1: तो श्रोता बंधु, आप थी साधना सारस्वत जी, आप गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी रही, आरसी कॉलेज में एक दोहरा जीवन जिया, एक दोहरी भूमिका के साथ जीवन जिया, जिसमें परिवार जैसी संस्था को संभाल करके समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि समाज हमसे और आपसे ही मिलता है। आज हमारे आप इस कार्यक्रम में आई मैडम, और अपने विचारों से, अपनी वाणी से हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चित्र छाया क्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, पारिवारिक संबंधों एवं संस्कारों पर बातचीत। साधना सारस्वत से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
1: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेषकर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
2: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकाय

0: को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
1: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
2: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से खत्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या वन आवर डेली निकाल लें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांदा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
3: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

0: कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृत खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहाँ कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
1: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या, सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
2: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले 1 वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
3: ओमान फोर्सेस द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनास पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है कीटनाशक और हमारा पर्यावरण। वार्ताकार हैं डॉक्टर एलसी अग्रवाल।
1: हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का सदैव से ही महत्व रहा है। कृषि से हमारी 62% जनसंख्या को आजीविका एवं 56% जनसंख्या को रोजगार मिलता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय में आज भी कृषि का योगदान उद्योगों से अधिक है। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पूर्ति के लिए हमने निरंतर कृषि का विकास किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए

कृषि की गहनता में वृद्धि की है, जिसके अंतर्गत हमने प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया है। इसके लिए उन्नत किस्मों के बीजों एवं उन्नत कृषि तकनीकों को प्रयोग के साथ ही रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। श्रोताओं, जहां आधुनिक तरीके से खेती के अच्छे प्रभाव हैं, वहीं अधिक मात्रा में रासायनिक खादों व कीटनाशकों से पर्यावरण व मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कीटनाशकों के रूप में विभिन्न विषैले रसायन उपयोग में आते हैं। कीटों का नाश करने के साथ ही ये कीटनाशक हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। छिड़काव के समय ही ये हमारी वायु को प्रदूषित कर देते हैं एवं हवा के साथ दूर दूर तक इनका फैलाव हो जाता है। मिट्टी में इन कीटनाशकों का संचय हो जाता है। इन रसायनों का कुछ भाग वर्षा के जल के साथ बहकर तालाबों, झीलों तथा नदियों तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप जल प्रदूषण आरंभ हो जाता है। श्रोताओं, कुछ रसायन जमीन में रिसकर नीचे चले जाते हैं तथा हमारे भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि में प्रयुक्त ये रसायन उर्वरक भी हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने पर ये जल के साथ बहकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। श्रोताओं, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों से हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे किसान भाई सिर्फ आवश्यकता अनुसार एवं सुरक्षित विधियों से ही इनका प्रयोग करें। जब वातावरण शांत हो तब इन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित एवं मान्य कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए। बंधुओं, शोधों द्वारा विकसित प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे गूगल का धुआं, नीम का तेल आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु समय समय पर मृदा की नियमित जांच भी कराते रहना चाहिए। हमें इन कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित एवं संतुलित प्रयोग करके हमारे पर्यावरण को बचाने में हमें पूरा सहयोग करना चाहिए।

आबो हवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता कीटनाशक और हमारा पर्यावरण। वार्ताकार थे डॉक्टर एलसी अग्रवाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रहे हैं जितेंद्र सिंह।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, तो दोस्तों आज का हमारा सुविचार है कि जीवन में हमेशा अच्छी संगति करें, क्योंकि संगति का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि संगति हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को आकार देती है। ये हमें सही रास्ते पर चलने, स्वाभिमानी बनने और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की प्रेरणा भी देती है। अच्छे मित्र, ज्ञानी और संस्कारी लोगों का साथ हमारे व्यक्तित्व का विकास कर हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसके विपरीत यदि हमारा

उठना बैठना नकारात्मक मानसिकता और खराब आदत वाले लोगों में है, तो उनके जैसी खराब आदतें धीरे धीरे हमारे आचरण और हमारे व्यवहार में पनपने लगती हैं। और ऐसे लोगों की संगति करने से समाज में हमारी छवि भी खराब होती है। इसी को लेकर आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों के करीब था। ऐसे समय में उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को ज्ञान दिया, अब अंत समय में मैं तुम्हें कोई जरूरी बात समझाना चाहता हूँ। उसने ये कहते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और एक कोयले का टुकड़ा और एक चंदन का टुकड़ा लेकर आओ। बेटा हैरान हुआ, पर पिता की आज्ञा मानते हुए वो कोयले का टुकड़ा रसोई से और चंदन का टुकड़ा बगीचे से ले आया। एक हाथ में उसके कोयला था और एक हाथ में उसके चंदन का टुकड़ा था। पिता ने कहा कि अब दोनों टुकड़ों को नीचे गिरा दो और मुझे अपने हाथ दिखाओ। बेटे ने जैसे ही अपने हाथ दिखाए तो पिता ने कहा, देखो, जिस हाथ में ये कोयला था वो काला हो गया और यही बुरी संगति की पहचान है। न केवल साथ रहने से नुकसान होता है, बल्कि उनके जाने के बाद भी हमारी बदनामी होती है। फिर दूसरे हाथ की ओर इशारा करते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अब अपने दूसरे हाथ को देखो, ये कितना खुशबू से महक रहा है और यही हमारी अच्छी संगति की पहचान है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि अच्छी संगति वाले लोग जो होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और अपने अच्छे विचारों से इस चंदन की तरह हमारे जीवन को महका देते हैं। इसलिए बेटा, हमेशा अच्छी संगति में रहो और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और इस बारे में कबीर दास जी ने भी कहा है कि कबीर संगति साधु की नित प्रति की जय जाए, दुर्मति दूर बहाव सी देसी सुमत बताए। यानी सज्जन लोगों की संगति करने से व्यक्तित्व का विकास होता है, सद्बुद्धि आती है और मन के विकार नष्ट हो जाते हैं।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज ही के दिन हर साल 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 अप्रैल 2017 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की स्थापना की गई थी। वैश्विक स्तर पर लगभग 90% व्यवसाय एमएसएमई हैं, जो 60 से 70% रोजगार प्रदान करते हैं और कुल जीडीपी में लगभग 50% का योगदान देते हैं। स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं की आजीविका को सहारा देने में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर अनेकों लोगों को रोजगार देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सरकार द्वारा भी ऐसे ही नवाचारों को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह की अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं और इन उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। तो आज हम कार्यक्रम में एक ऐसे ही युवा उद्यमी से हम बात करेंगे, जिन्होंने अपना खुद का एक लघु उद्योग स्थापित किया है और उसको सफल रूप से चला रहे हैं। तो उनसे बातचीत पर आधारित ये विशेष जानकारी हम आपको सुनवाते हैं। मन में कुछ करने का जुनून हो, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी ऐसी मुश्किल या कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारे साथ कार्यक्रम में है आज एक ऐसे खास मेहमान, जिन्होंने गाय के गोबर आधारित उत्पादों को एक पारंपरिक अवधारणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आधुनिक व नया स्वरूप देकर एक सफल व्यवसाय खड़ा किया है। आपका कार्य कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेहनत अगर सच्ची हो तो साधारण से दिखने वाले संसाधन भी असाधारण सफलता की कहानी लिख सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही खास अतिथि हैं श्री रिद्धीश कुमार मोदी जी। तो आज हम उनसे उनकी सफलता के बारे में, उनके स्वरोजगार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक अभिनंदन।
1: धन्यवाद राधे राधे।
0: आपके व्यवसाय की शुरुआत हुई गाय के साधारण से गोबर से, अपने व्यवसाय के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मेरा नाम है रिद्धीश मोदी और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी जो यूपी की यात्रा है, ज्यादातर हम धार्मिक स्थलों को हम लोग हमारे बिजनेस के माध्यम से जो हमारा उत्पादन है वो है पंचगव्य प्रोडक्ट है। पंचगव्य का मतलब क्या होता है कि जो गाय माता होती है हमारी, उनके गोबर, घी, मूत्र, दूध और दही से बनी हुई, पंच तत्वों से बनी हुई ये प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, बस यही सब चीज़ें लेके मैं यहाँ यूपी में आया हूँ और यहाँ की सरकार ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। मेरा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल यहाँ CM युवा में स्थापित है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि

0: पूरे भारत में ये जो हमारा मिशन है, जो गायों की सेवा करना, वही उद्देश्य से मैं यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से ये चीजें मैं डेवलप करने के लिए आया हुआ हूँ।
1: ये जो बिजनेस मॉडल है आपका, इसके बारे में आपके मन में कैसे विचार आया, कहाँ से इसके लिए आपको प्रेरणा मिली?
0: ये प्रेरणा मुझे गायों की सेवा से मिली हुई है। सबसे पहले तो आप सबको यही बताना चाहूंगा, मैं एक कृष्ण भक्त भी हूँ। मुझे पता भी है कि अगर आपको पता हो शायद, बहुत सारी गायें रोड पे छोड़ भी जाती है। मेरा मिशन, मेरा मोटो यही है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम गायों की सेवा भी कर पाए। और दूसरा मेन यही है कि आजकल की जो महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो, उसी उद्देश्य को लेके मैंने ये बिजनेस स्थापित किया है, जिसमें क्या होता है कि गायों की सेवा भी होती है और महिलाओं के अच्छी रोजगार भी मिलती है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है, तो उसी पाथ पे मैं अभी चल रहा हूँ।
1: जो आपने बात कही गौ सेवा की, तो निश्चित रूप से आपका जो व्यवसाय है इससे गौ सेवा भी हो रही है। तो इसी में एक प्रश्न हम जोड़ना चाहेंगे कि जो आपका जो रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है, तो शायद वो गौशालाओं वगैरह से आता होगा, इससे गौशालाओं को सीधा क्या लाभ होता है?
0: हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो पंचगव्य है, जो गाय माता के गोबर, घी, मूत्र, दूध और दही से बनी हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट गायों की सेवा तो हो ही रही है। दूसरा उद्देश्य हमारा यही है कि पंचगव्य एक ऐसी प्रोडक्ट है, नॉर्मली क्या गोबर से भी लोग बनाते हैं, मूत्र के लिक्विड फॉर्म में भी लोग, बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है, लेकिन हमने जो शुरुआत की है, ठीक है, वो हर गौशाला में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ठीक है, जब ये चीज़ें मार्केट में जब रन करेगी, जब चलेगी, तो क्या होगा कि लोग गौशाला के कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से ये सारी चीज़ें वो लोग परचेस करेंगे और उन्हीं चीज़ों से ये प्रोडक्ट बनाई जाएगी।
1: जी
0: और मेरी प्रोडक्ट टोटल 5 प्रोडक्ट है, जिसमें अगर मैं बताऊँ तो धूपस्टिक है, सामरानी कप है, धूपकॉर्न है और एयर प्योरीफाई केक है। उसके अलावा हम और प्रोडक्ट भी ला रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में, जो मेडिसिन का काम करेगा। तो ये क्या है कि ये सब चीज़ें लेने से वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मैं आपके पास से गोबर परचेस करता हूँ या और चीज़ें परचेस करता हूँ, तो आपको आमदनी मिलने वाली है। जितना मैं ज़्यादा परचेस करूँगा उतना ज़्यादा आमदनी मिलेगी। तो आप खुद एक आत्मनिर्भर हो जाओगे कि आपका जो भी गौशाला का जो मेंटेनेंस होगा वो नील हो जाएगा और आपको कुछ दिखेगा उसमें। तो इसमें 2 फायदे, आपके भी फायदे और गायों की सेवा भी हो रही है। तो आपके मन में कभी ये सोच नहीं आएगी कि भाई ये गाय दूध नहीं दे रही है तो अब इसका मैं क्या करूं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस तो लगने ही वाला है, क्योंकि
1: जी
0: उसको चारा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास इनकम होती है तो आप उस गाय को कहीं छोड़ोगे भी नहीं, उसकी सेवा भी करोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ये करोगे कि मैं और गाय बढ़ाऊँ और अच्छे से मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। तो ये
1: जी
0: भाव होता है सर।
1: जब आपने अपने व्यवसाय की शुरुआत की, तो कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई और लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी?
0: सीधी बात है कि जब आप कोई भी नया व्यवसाय चालू करते हो, नया बिजनेस चालू करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो और आप एक माध्यम लेके चलना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में चुनौतियां बहुत आएगी। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ये बिजनेस के लिए, आप चाहे आपके उस कंडीशन में चाहे अप हो या चाहे डाउन हो, लेकिन आपको वहां पे स्थायी होना पड़ेगा और आपको ऐसा बिजनेस मार्केट में लाना पड़ेगा जिसकी डिमांड बहुत है। मैंने ये बिजनेस इसलिए चूज किया, इसमें एक तो मेरा सेवा का भाव है, जो गायों की मैं सेवा कर पा रहा हूँ। दूसरा क्या है कि इसमें वुमेंस, उनको भी एक रोजगारी मिल रही है, क्योंकि ये आप कहीं भी इसको, मतलब मैं घर बैठे भी आप बना सकते हो, फैक्ट्री में बना सकते हो, तो आपके लिए सारे ऑप्शन ओपन है और इसमें ज़्यादा लागत लगती नहीं है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस है और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर। तो ये प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है ना, ये दोनों जो हमारी कमजोरी है उसको वो दूर करता है।
1: जी
0: तो इसी को लेके आज लोगों में इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड बढ़ रही है और ये बिजनेस मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये रिपीटेबल बिजनेस है, इसका डेली कंजप्शन होता ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एसी परचेस करते हैं तो एक बार परचेस कर लिया तो वो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद परचेस करेंगे। ये चीज़ क्या, हमारे डेली सुबह शाम यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है, तो आपका कंजप्शन बढ़ता रहता है। और पब्लिक की प्रतिक्रिया यही है कि जो भी मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो रिपीट मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बार बार मेरी प्रोडक्ट का वो लोग डिमांड भी करते हैं। और जो मैंने किसी को जो सेल किया, अगर मानो कि मैंने 2 पैकेट सेल किया ना, वो अभी मेरे पास 5-5 पैकेट, 10-10 पैकेट ले रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल टास्क है और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, आप जितने अच्छे से आप इस प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, इतना ही आपका धंधा बढ़ेगा।
1: तो अपने काम के बारे में ये बताएं कि क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की

0: आवश्यकता है या किस तरह की आपने यूनिट लगाई हुई है जहाँ उत्पादन होता है?
1: सर, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, वो ई रिक्शा कार्ट है और कैनोपी है। ये क्या है कि ई रिक्शा कार्ट एक चलती फिरती शॉप है। जहाँ भी आपको मॉल लगे, जहाँ भी आपको मार्केट लगे, जहाँ भी कथाएं चलती है, जहाँ भी इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, वहाँ पे आप कार्ट खड़ी कर दो, पब्लिक आपके पास आएगी और परचेज करेगी। तो इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इतना स्क्वायर फीट में इतनी बड़ी जगह चाहिए। जो गौशाला है, ये बिजनेस वहाँ भी उत्पादन होता ही है हमारा, तो उसके लिए हमें कोई स्पेशली जगह ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत मशीनरी जो होती है वो हमें परचेस करनी पड़ती है, और उसी के माध्यम से हम लोग क्या इसको प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं। तो ये बहुत ही कम लागत का ही बिजनेस है। अभी सर हमारा क्या पूरा, अभी मैंने यूपी से स्टार्ट किया है, हमारा गुजरात में भी मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं यूपी में इसलिए आया हूँ क्योंकि यूपी हमारा एक स्पिरिचुअल प्रदेश है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बड़े तीर्थ स्थान है। यहाँ के जो यूपी सरकार के जो सीएम युवा योजना है, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। सीएम युवा है, यूथ अड्डा है, यूपी कॉन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मेरा टाइप है। उनकी साइट पे मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल है कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो सरकार
0: हाँ
1: उसको लोन दे रही है 5 लाख के बिना कोई इंटरेस्ट,
0: जी
1: तो वो मेरा बिजनेस भी वो हायर कर सकते हैं वो लोग। तो ये टास्क है मेरा और ये मेरे फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसके माध्यम से क्या है कि ये मेरा बिजनेस मैं अभी यूपी में रन कर रहा हूँ। अभी मेरा फिलहाल बांके बिहारी वृंदावन, अभी मेरा कैनोपी आ रहा है, दूसरा मेरा इस्कॉन में आ रहा है, तीसरा मेरा प्रेम मंदिर आ रहा है और चौथा मेरा कृष्ण भूमि आ रहा है। उसके बाद मेरा प्लानिंग है प्रयागराज का भी है और अयोध्या और वाराणसी। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे मैं ये बिजनेस को स्प्रेड कर रहा हूँ।
0: आपने बताया जैसा कि आपके बिजनेस से जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनका इनकम ऑफ सोर्स डेवलप हो रहा है, तो क्या ये उत्पादन महिलाएं अपने घर पर ही करती हैं? कुछ मशीनें वगैरह आपने लगाई हुई हैं तो इसके बारे में बताएं।
1: ये बिजनेस में क्या है कि इतनी हाई मशीनरी नहीं होती है,
0: जी
1: ठीक है, दो तीन मशीनरी होती है प्रोडक्ट की शेप देने के लिए। और इसमें क्या है कि हम लोग ज़्यादातर मैन्युअली करवा रहे हैं, जिससे क्या है कि उनको रोजगारी अच्छी मिले। हमने शुरुआत की थी 3-4 महिला से स्टार्ट की थी, आज हमारे यहाँ 8-9 महिला है। तो ये बात हुई प्रोडक्शन बनाने की बात हुई, लेकिन उसके अलावा ये मेरा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, जिसमें अगर महिला खुद काम करेगी ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएगी। ये पूरा स्मार्ट बिजनेस है, हम पूरी ट्रेनिंग देते, पूरा नॉलेज देते, पूरा उनका मार्केटिंग हम पूरा कवरेज करके देते, ताकि उनको क्या ये चलाना बहुत आसान हो जाए। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसको ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, कुछ महिलाएं जो ऑनलाइन भी बिजनेस करती है मेरी प्रोडक्ट का, और कुछ लोग हैं जो मैन्युअली प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बहुत ही बहुत लो कैटेगरी के होते हैं, जो कि मतलब मैं जो पढ़े लिखे नहीं होते वो घर बैठे अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि घर की भी उनकी जिम्मेदारियां होती है,
0: जी
1: क्योंकि कभी कभी लोगों को परमिशन नहीं होती है कि आप बाहर काम करो ये करो, लेकिन वो घर बैठे भी ये कर सकते हैं ताकि वो एक दो आमदनी कमा पाए।
0: यानी प्रोडक्शन में सहयोग कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: प्रोडक्शन में भी सहयोग कर पाए, और दूसरा क्या है कि अगर वो स्मार्ट होती है तो ये आउटडोर पे भी वो लोग काम कर सकते हैं, कार्ट पे भी काम कर सकते हैं, कैनो पे भी खड़े रह सकते हैं और अपना खुद का एक स्टार्टअप कर सकते हैं।
0: आज आपका बिजनेस किस लेवल पर है?
1: आज अगर मैं मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं पिछले 8 महीने से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत के कुछ दिनों के बाद जब मेरा ये कंप्लीट मेरा प्रोडक्शन वगैरह सब सेटअप हुआ, तो जब मैंने शुरुआत में मैं कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे बांके बिहारी मेरा जो स्टॉल लगा हुआ था कैनोपी, मैं जहाँ पे खुद खड़ा रहता था, मेरी पर डे की 5,500, 5,000, 6,000 की मेरी पर डे की इनकम है। तो ये मेरा स्टार्टअप हो चुका है। अब क्या है कि धीरे धीरे मैं अभी ये डोमेस्टिक लेवल पे भी हूँ। जैसे मेरा अभी एक कैनोपी है, अभी जैसे हमारा 4 या 5 कैनोपी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टर्नओवर बढ़ने वाला है।
0: जी
1: उसके अलावा हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से उसे डेवलप कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा।
0: तो इसमें कुछ सरकार का सहयोग मिल रहा है आपको?
1: सरकार का सबसे बड़ा सहयोग यही है कि इतनी बड़ी पावन भूमि में मुझे उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो। मैं यहाँ सारे डेप्यूटी कमिश्नर से मिला हुआ हूँ, उन लोग का बहुत ही अच्छा सहयोग है। तो अभी क्या है कि स्टार्टिंग लेवल है ना, इसलिए हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाने के लिए उसको मेहनत कर रहे हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा उसका मार्केटिंग हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के तो लोगों को बहुत अच्छा सहयोग है और यहाँ की जनता भी बहुत ही सपोर्टिंग है। मैं सबकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे अभी मेरा कैनोपी है वहाँ भी बहुत सारी चैलेंजेस आती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया है। ये सपोर्ट है तभी मैं यहाँ पे इसको डेवलप कर पा रहा हूँ, तो
0: जी
1: सहयोग तो सबका है।
0: भविष्य के लिए आपकी और कुछ योजनाएं हैं?
1: यस सर, डेफिनेटली मेरी अभी जो शुरुआत है वो अच्छी हुई है और अभी मैं डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहा हूँ। अभी मैंने यूपी से स्टार्ट किया हुआ है, अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट गुजरात आ रहा है, मुंबई, पुणे, हर जगह मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। और हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया का माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे सारा सेटअप कर रहे हैं और मुझे विश्वास है

0: कि मेरी प्रोडक्ट हर घर में जाएगी, और मैं आगे हम लोग एक्सपोर्ट की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ कस्टमर से हमारी बात भी हो चुकी है, वो भी हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आज वो लोग भी खुश हो रहे हैं कि भाई सर आपकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
1: गाय के गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे हमारे युवा जो कि इस तरह की एक साधारण संसाधन से एक असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सर इसमें क्या है कि देखो, ये पूरा ओपन बिजनेस है, पूरा मल्टीपल ऑप्शन है। एज अगर मैं आमदनी की बात करूं तो इसमें आप अच्छी आमदनी कमा सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुई बिजनेस की, लेकिन मेन मकसद क्या है कि ये बिजनेस के माध्यम में आप तो सबसे पहले बहुत सारी सेवाएं भी कर रहे हो, गायों की सेवाएं कर रहे हो, ठीक है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि गाय माता के

0: अगर शुरुआत करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सर इसमें क्या है कि देखो ये पूरा ओपन बिजनेस है, पूरा मल्टीपल ऑप्शन है। एज अगर मैं आमदनी की बात करूं तो इसमें आप अच्छी आमदनी कमा सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुई बिजनेस की, लेकिन मेन मकसद क्या है कि ये बिजनेस के माध्यम में आप तो सबसे पहले बहुत सारी सेवाएं भी कर रहे हो, गायों की सेवाएं कर रहे हो, ठीक है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि गाय माता के ये जो पांच तत्व है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, उनका हर तत्व बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होता है।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे श्री रिद्धिश कुमार मोदी जी। और जैसा कि आपने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि गाय के गोबर, गौमूत्र और अन्य जो गाय से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, उनसे आपने अपने उत्पाद की शुरुआत करी और इसको लेकर आप जो है निरंतर सफलता की ओर बढ़ भी रहे हैं। तो आज आपने जो हमारे श्रोताओं को अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से जो भी इस वार्ता को सुन रहे होंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। अगर व्यक्ति चाहे तो कहीं भी सफलता के नए आयाम बना सकता है। तो हमारे श्रोताओं से ये चर्चा करने के लिए और इस बात की प्रेरणा देने के लिए कि आप भी जो है अपना कोई भी स्वरोजगार खड़ा करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आपने आज हमारे साथ की, इसके लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।

हम अपने घर में, अपने आसपास और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम अनेकों बीमारियों से दूर रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास के मार्ग की ओर अग्रसर रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता में सहयोग प्रदान करना सीधा हमारे राष्ट्र की प्रगति में योगदान है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जन जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता का अर्थ केवल अपने घर को साफ रखना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण, गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना है। और सार्वजनिक स्वच्छता का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब सार्वजनिक स्थल स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो निश्चित रूप से इससे बीमारियाँ रुकेंगी, जैसे कि हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब बीमारियाँ नहीं पनपेंगी। और स्वच्छ वातावरण रहने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे काम करने की जो इच्छा है वो भी अधिक रहती है और हमारा मन भी खुश रहता है। साफ सुथरा वातावरण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और काम करने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा जो शहर साफ सुथरा रहता है, वहाँ के नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। एक स्वच्छ शहर या देश पर्यटकों को आकर्षित करता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक स्वच्छता केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार बनना होगा। और इसी के साथ अब कुछ खास खबरें पढ़ लेते हैं। जिला स्तरीय ट्रायल संपन्न, अब मंडल की बारी। 27 को जूनियर और 29 जून को सीनियर वर्ग के आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होंगे अगले ट्रायल। स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को जनपद की जूनियर एवं सीनियर तैराकी टीमों के चयन ट्रायल आयोजित किए गए। ट्रायल में जिले के करीब 40 बालक एवं बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल के लिए चुना गया। और इसी के साथ एक और खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में तीन भाषाओं वाली नीति, त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर भ्रम को दूर किया है, जिससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सातवीं और आठवीं और नौवीं में पढ़ने वाले जिन छात्रों ने त्रिभाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं को चुना है, उन्हें अपनी मौजूदा भाषा बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये छात्र कक्षा 10 तक अपनी चुनी गई भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। और इसी के साथ अब एक नज़र आज के दिन विशेष पर डाल लेते हैं। आज की तिथि यानी 27 जून इतिहास के झरोखों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1954 में मॉस्को के निकट ओबनिस्क शहर में सोवियत संघ का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ था, जो 48 वर्षों तक चालू रहा। और आज ही के दिन सन 1967 में लंदन के वर्कलेज बैंक में दुनिया का पहला ATM लगाया गया। तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मित्रों, इसी के साथ एक और अपील हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अपने घरों में साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरह से अपनी गली मोहल्लों में, अपने आसपास पड़ोस में और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रहे थे जितेंद्र सिंह, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भगवान दास शर्मा का राग अहीर भैरव में निबद्ध ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना भगवान दास शर्मा का तीन ताल में निबद्ध ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है, लीजिए फिर सुनिए क्रम के अंतर्गत रूपक मोहे डीग नगरिया भाई गई रे। इसका आलेख अजय कुमार संतोष का है, प्रस्तुति है श्री कृष्ण शरद की।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज यात्रा रूपक माला के अंतर्गत सुनिए आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर तैयार अजय कुमार शर्मा संतोष का लिखा रूपक मोहित डीक नगरिया भाई गई रे। इस रूपक के प्रस्तुत करता है श्री कृष्ण शरद। तो सुनिए रूपक मोहित डीक नगरिया भाई गई रे।

0: ब्रज के पश्चिमी छोर पर बसा छोटा सा नगर डी राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल डी पुराना नाम दीर्घपुर अथवा दीर्घवन जिसको जाट राजा ठाकुर बदन सिंह और उनके प्रतापी पुत्र राजा सूरजमल ने नए रूप में बसाकर अपनी राजधानी बनाया। भरतपुर दुर्ग बनने से पहले तक डीघ ही जाट शासन का प्रमुख केंद्र रहा। जाट राजाओं की नगर सुरक्षा और उसकी सतर्कता की कहानी कहता है यहाँ का सुदृढ़ दुर्ग, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, उस पर बने बड़े बड़े बुर्ज और बुर्ज के चारों ओर बनी गहरी गहरी खाइयां जो पानी से सदा लबालब भरी रहती थी। डीग में सुंदरता की कहानी कहते हैं यहाँ पर बने हुए मनोहरी जल महल, जिनके अलंकरण में जाट नरेशों ने अपने दिल्ली अभियान से प्राप्त प्रभु द्रव्य का उपयोग किया। डीग के राजभवनों में प्रधान हैं गोपाल भवन और सूरज भवन, जिनमें संजोकर रखी गई हैं वे मूल्यवान वस्तुएं जो यहाँ के राजाओं द्वारा विजय अभियानों से अर्जित की गईं। डीग में बने इन भवनों के चारों ओर सुंदर सुंदर उपवन और यहाँ बने दो विशाल पक्के सरोवर रूप सागर और गोपाल सागर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र आज भी बने हुए हैं। रोचक कला कौशल के अद्भुत नमूने हैं ये डीग के राजमहल, जो अपने विविध रंगी फव्वारों के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। कहने का अर्थ ये कि प्रजांचल स्थित ये डीग नगरी दर्शनीय तो है ही, ऐतिहासिक भी है और सांस्कृतिक भी।
1: वीरभूमि राजस्थान का पूर्वी द्वार मथुरा नगरी से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित भरतपुर राज्य की 1947 से पूर्व में राजधानी जल महलों की नगरी लठावन विशाल किलों से घिरी साक्षी गोपाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर शोभा से युक्त नगरी में जैसे ही कोई कदम रखता है सहसा कह उठता है ये डीग है।
2: ये वही डीग है जब प्राचीन काल में भरतपुर राज्य था और ये राजधानी, जब इसने अनेकों महाराजाओं के पराक्रम और शौर्य को देखा,
1: जिनमें महाराजा बदन सिंह का सन 1723 से 1756 तक, महाराजा सूरजमल का 1756 से 1763, जवाहर सिंह का 1763 से 1768, रतन सिंह का 1768 से 1769, केहरी सिंह का 1769 से 1776, रणजीत सिंह का 1776 से 1805, रणधीर सिंह का 1805 से 1823,
2: बलदेव सिंह का सन 1823 से 1824, बलवंत सिंह का 1824 से 1853, जसवंत सिंह का 1853 से 1893, राम सिंह का 1893 से 1900, कृष्ण सिंह का 1900 से 1929 और ब्रजेंद्र सिंह का 1929 से 1949।
1: ब्रज 84 कोस की यात्रा में पड़ाव के लिए सुप्रसिद्ध डीग कस्बे ने जिस तरह महाराजाओं के जीवन के अनेक अनेक बदलाव देखे, वैसे ही अपने स्वरूप के भी बदलाव देखे।
2: यानी कि डीग का अति प्रारंभ से नाम डीग नहीं था, कुछ और था।
1: बिल्कुल सच कहा आपने, डीग का पूर्व में नाम दीर्घपुरी था, ऐसा उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ये पौराणिक नगरी है, दीर्घपुरी से कालांतर में दीर्घ रह गया। इतना ही नहीं, उन्हें समयांतर के बाद भाषा की दृष्टि या यों कहें मुख सुख की दृष्टि से ये घिस गया और दीग रह गया। अंग्रेजों ने अपनी भाषा में दा का आलोप देखकर इसे डीग कह दिया।
2: ठीक है, मान लिया डीग का नाम दीर्घपुरी था, स्वरूप बदलते बदलते डीग हो गया, पर लठावन के बारे में किंवदंती क्या है, क्यों कहते हैं डीग को लठावन?
1: कभी कभी इतिहास बन जाता है किंवदंती और किंवदंती इतिहास, इसे समेटे रहते हैं पुरानी पीढ़ी के लोग।
2: डीग का नाम लठावन क्यों पड़ा, इसके बारे में क्या कहते हैं वहाँ की पुरानी पीढ़ी के लोग?
1: लोगों का कहना है डीग ब्रज 84 कोस यात्रा का मुख्य पड़ाव है, क्योंकि ये भूमि श्री कृष्ण की गोचारण भूमि रही है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ से 5

0: 7 किलोमीटर दूर जा सेरस गांव तक गौ चराने आते थे। कहा जाता है कि ग्वालबाल श्री कृष्ण भगवान को जब डी क्षेत्र में चलने को कहते थे तो वो आनाकानी करते थे। उस स्थिति में ग्वालबाल लठ के बल पर यहाँ लाते थे उन्हें, इसीलिए यहाँ का नाम लठावन पड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर बांसों का वन था जिनसे लठ या लाठी बनते थे, इसीलिए भी ये लठावन कहलाया।
1: मैं नंदकिशोर गांधी, डीक के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। स्कंद पुराण में डीक को दीर्घपुर नाम सो अभिवित कीनो है। दीर्घपुर नाम प्रयत्न लाघव सो है। 18वीं सदी में दीघ बन गयो। कवि सोमनाथ ने दीर्घ और धीर को प्रयोग कीनो है। दीर्घ सुग्राम अति ही ललाम जह गढ़ बिलंद छल के अमंद बुरजन अनेक मंडत विवेक सहसन विशाल जुत जंग जाल। दीर्घ सो दीघ फिर मुख सुख सो दीघ कहो जावे लगो। दीघ फिर अंग्रेजी वर्णमाला सो दीघ है गयो। कवि सूदन ने दीघ के दुर्ग की भव्यता को देख के या नगरी को सुंदर सता की नगरी कहो है। दीर्घ दुग्गह सोम भरी मानो हो सुंदर सुता नगरी। कवि अखेराम तो दो डग आगे बढ़ गए हैं। अति ही दीर्घ सुहावनो अमरपुरी अनुमान। दीघ व्रत 84 कोश परिक्रमा के मध्य आवे है। या को लठावन भी कहो जावे है। बूढ़ा बद्री आदि बद्री दद अवली जैसे धार्मिक पौराणिक महत्व के ठिकाने समीप ही हैं। राजा बदन सिंह ने यहाँ किले को निर्माण करायो। यहाँ के पाछे महलन को निर्माण करायो। फिर पुराने महलन को नाम सो जानो जावे है। सूरजमल ने डीक के जल महलन को निर्माण करायो। गुप्त काल की शैली पे बने ये भवन स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूना है। सन 1759 से 1763 तक बने ये भवन सौंदर्य और शिल्प में उच्च कोटि के माने गए हैं। गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, जलमहलन हिंदू शिल्प कला के बेजोड़ नमूना कहे जाए। भवन के बीच फूल पत्ती खम्मा झरोखा बारादरी शिल्प कला की देखते ही बने हैं।
2: आइए अब बात कर लें यहाँ के स्वरूप और लोक संस्कृति के बारे में।
0: लोक संस्कृति की बात कही है तो मन ये कहता है जिस राजस्थान भूमि का कण कण अपने में मनमोहने वाला मंत्रमुग्ध कर देने वाला जादुई करिश्मा रखता है भला उसे डीग वंचित क्यों करके रहेगा। पर लोक संस्कृति की तरफ नजर घुमाने से पहले डीग में प्रवेश करना होगा।
2: हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे।
0: जी वो हम समझाते हैं अपनी बात का मतलब, लेकिन इससे पहले इसके चारों ओर बने किलों की बात तो कर लें जिनकी वजह से राजा महाराजाओं के जमाने में आक्रमणकारी डीग में प्रवेश नहीं कर पाता था। इतना ही नहीं बुर्जों पर रखी तोपें आक्रमणकारियों के हौसले परस्त कर देती थी। सबसे बड़ी तोप लाखा बुर्ज पर है। कहते हैं इसका गोला दिल्ली तक जाता था।
2: अगर ये सच है तो उस वक्त के लोगों की निष्ठा पूजनीय है, वंदनीय है और आज की पीढ़ी के लिए अनुकरणीय भी।
0: इतना ही नहीं महल के रूप में सुरक्षित आवास स्थल थे क्योंकि किलों के चारों ओर नहर थी। जब आक्रमणकारी आते थे उस वक्त लकड़ी के बने मार्ग हटा दिए जाते थे जिससे दुश्मन आक्रमण नहीं कर पाता था। इतना ही नहीं किले के अंदर अंधे कुएं भी थे, उनमें दुश्मन को गिरफ्तार करके डाल देते थे। इन अंधे कुओं को भाक्सी कहते थे।
2: वाकई डीग में प्रवेश सहज बात नहीं थी प्राचीन काल में, पर सुना है यहाँ व्रत 84 कोस की यात्रा का पड़ाव होता था तो उसे प्रवेश कैसे मिलता होगा।
0: ब्रज यात्रा का भादों की अमावस्या के बाद प्रतिपदा को आगमन होता है जिसका भरतपुर के महाराजा रंगीन फव्वारे चलवाकर स्वागत सत्कार करते थे। तो वहीं अस्पताल के पास सिर की पलर तानकर छोटी दुकानें बनाई जाती थीं, मेला लगाया जाता था जिसकी आज भी परंपरा ज्यों की त्यों चल रही है। ब्रज यात्रा परंपरा के बारे में संदर्भ दे रहे हैं एक विद्वान।
3: मैं पंडित मुरारीलाल पारासर ब्रज यात्रा के विषय में कुछ संक्षेप में वर्णन कर रहे हूँ। ब्रज 84

0: काशी कोश की यात्राओं को राजस्थान में डीग और कामा दो ही क्षेत्रों में इनको पड़ाव या मुकाम है। डीग तहसील के ग्राम पोंछरी से श्याम ढाक होते हुए ब्रज यात्रा बहज से डीग आयकर के मुकाम करे है। डीग को एक नाम लठावन भी बताया गया है। डीग से परमादरा जिसे परमाद्री परमादरा भी कहते हैं। कुछ लोग याकू सुदामा जी को स्थान बतावे तो यहाँ सुदामा जी को मंदिर भी है, कुछ श्री धामा जी को भी स्थान बतावे हैं। यहाँ से यात्रा प्रस्थान करे है आगे के लिए जहाँ बूढ़ी बद्री के नाम से जानो जाए, जहाँ 250 कदम के पेड़ हैं और कलुआ बाबा को मंदिर स्थापित है। मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र से के प्राचीनतम मंदिरों में से एक अनूठो मंदिर है। जाकी दीवाल 2.5 मीटर चौड़ाई की है। यहाँ से आल बद्री को स्थान है। यह स्थान सुरम में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। यहाँ को प्राकृतिक सौंदर्य अप्रियतम है। यहाँ हरिद्वार हर की पौड़ी ऋषिकेश लक्ष्मण झूला आदि को स्थान भी बने हुए हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में झरना भी झरती रहती हैं। इसी के बाद डीग क्षेत्र के ही सेव ग्राम जाकू श्याम प्रासवन कहे हैं। यहाँ नैन सरोवर नामक कुंड है। यह कुंड 15 बीघा जमीन में बनाया गया है। जाकी 18 बुर्ज सहित 18 ही जाके घाट हैं। 2 गौ घाट भी बताए जामे हैं। यहाँ सुगंधरी शिला जरखोण हनुमान मंदिर टंकेश्वर महादेव इसके पहाड़ में अनेक प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ से यात्रा कामवन के लिए प्रस्थान कर जायो करे है। डीग शहर में उपराचीनतम तीन लक्ष्मण मंदिर हैं। शहर के मध्य लक्ष्मण मंदिर शेषावतार जी के रूप में विराजमान हैं, जो महाराजा सूरजमल के पिता राजा बदन सिंह ने बनवाया है। शहर में 3 दाऊजी के मंदिर हैं। द्वारकाधीश जी को मंदिर है, राधा वल्लभ जी को मंदिर विराजमान है और सीताराम जी भी हैं, चतुर्भुज जी हरदेव आदि के मंदिर यहाँ निर्माण कराए गए हैं। डीग के चारों कोनों पर भगवान शिव की प्राचीनतम मंदिर हैं। राजेश्वर रूपेश्वर गंजेश्वर और चौमेदा महादेव डीग में प्राचीनतम 14 तालाब व कुंडे जहाँ मंदिर देवालय स्थापित बने हुए हैं।
1: ब्रज यात्रा के समय लगने वाला मेला धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रारंभ में मेले का उद्देश्य स्थानीय लोग व ग्रामवासियों द्वारा ब्रज यात्रियों के दर्शन करना और उनका स्वागत करना था, तो वहीं घर की छोटी मोटी आवश्यकता की वस्तु खरीद कर ले जाना भी था।
2: जैसे स्त्रियां काजल बिंदी चुटीला मेहंदी महावर काखई डोरा बल आदि खरीद कर अपना मनोरथ पूरा करती थीं। कहा तो ये भी जाता है, फलों के नाम पर सेब केला अंगूर की एका दुकान लगती थी, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नई चीज हुआ करती थी।
1: पर अब ये मेला बिंदी चुटीला की खरीद फरोख तक सीमित न रहकर पशु मेला से जुड़ गया है, यानी पशुओं की खरीद फरोख्त विशाल पैमाने पर होने लगी है। इस मेले की व्यवस्था कस्टम विभाग पर थी, बदलाव आया। 1947 के बाद मेले का कार्यभार नगर पालिका को दे दिया गया। तब से लेकर अब तक ये व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन के ही अधीन है।
2: डीग में लगने वाली जवाहर प्रदर्शनी और पशु मेले का आयोजन केवल पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए ही होता है या फिर और आयोजनों के लिए भी?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 7 दिन तक लगने वाला ये मेला कभी कभी 10 दिन तक भी चलता है। हालांकि पूर्व में बंगाली यात्रियों का सत्कार करना इस मेले का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन अब वो गौण हो गया। मेले के अवसर पर रंगीन फव्वारे चलाए जाते हैं। ब्रज लोक कलाओं को उजागर करने के लिए यहाँ पर 6-7 रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।
2: ब्रज लोक कलाओं के कार्यक्रम के अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसकी समुचित व्यवस्था नगर पालिका डी व जयपुर विरासत फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से होती है।
1: क्या होता है इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में?
2: इनमें प्रमुख कार्यक्रम होते हैं चरकुला नृत्य, रसिया, भजन, मोर नृत्य, दीपक नृत्य, चक्र नृत्य आदि। इन कार्यक्रमों में सैकड़ों कलाकार भागीदारी करते हैं।
1: इतना ही नहीं, इस मेले में हर रंग की छटा बिखेरते हुए नौटंकी, कव्वाली, कवि सम्मेलन के

0: विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय लोगों के आकर्षण के लिए जहां एक ओर मशहूर सर्कसों का जमावड़ा होता है, तो वहीं दूसरी ओर खजला मिठाई का भी अच्छा बाजार लगता है।
1: एक ओर जहां जवाहर प्रदर्शनी अपनी छटा के रंग बिखेरती है, तो वहीं प्रदर्शनी स्थल के सामने बने जल महल, उद्यान व सरोवर की अनुपम छटा भी आगंतुक जनों का मन मोहने में पीछे नहीं रहती।
2: मैं भगवान ब्रजवासी डीक के उद्योग धंधे, त्योहार, मेले और फल फूल के बारे में अब आपको बताऊं। एक समय सुंदर सुदृढ़ परकोटा के भीतर डीक को समृद्धशाली नगर बसो हो। जब मुगल साम्राज्य अंतिम सांस ले रहे हो, तब दूर दूर से व्यापारी, कारीगर, कलाकार वर्ग को यहाँ की सुरक्षा और रोजगार को लालच खींच लायो। शहर की शोभा देखते ही बनती। व्यवसायिकों से दूर देशन तक व्यवसाय फैलो है। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनानो, तांबे पीतर लोहे की तोपे ढारवो, हाथी दांत के चवर तथा पंखिया की सुंदर पच्चीकारी मूर्ति इनको बनावो, तेल मिले आदि व्यवसाय यहाँ प्रमुख है। इनको निर्यात बाहरी देशन यानी रंगून तक होतो। वर्तमान में लोहे के बर्तन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पीतल के नगाड़े तो अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान और इराक तक निर्यात अबू हो में। यहाँ ब्रज त्योहार में दिवाली, होली, सावन, गणगौर आदि खूब मनाए जाएं। होली के बाद में होरंगा स्वर ले और रंगन को अद्भुत तालमेल छटा बिखेरे। मेलन में जवाहर प्रदर्शनी डीग, जनूथर गांव को गणगौर को मिलो, सिंसनी गांव को सिद्ध बाबा को मिलो, एकलेरा गांव को देवी को मिलो या आंचलिक संस्कृति को परिचय दी। में डीग में बागन की संख्या बहुत है, जिनमें फल फूलन की क्यारी सुशोभित हैं, गुलाबन की महक की क्यारियां और बेरन के बागन की रसीली महक। डीग के बेर तो आज दूर दूर तक विख्यात हैं। खावे में बहुत रसीले और सेब जैसे मोटे मोटे। एक बैयर यहाँ के मेले देख के एक बार देख गई, दोबारा देखने की लालसा आई तो अपने पति से कह रही है या गीत में,

0: महाराज, आज से पहले आपको हमने इस तरह चिंता मग्न कभी नहीं देखा। क्या कारण है, हमें बताएंगे?
1: महारानी, हम कभी चिंतित नहीं रहते। हाँ, राजकाज के बारे में चिंतन अवश्य करते रहते हैं। ऐसा ही एक चिंतन चल रहा है हमारे मन में।
0: महाराज, वो चिंतन का विषय अगर उचित जान पड़ता हो तो हमें अवश्य बताएं। शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके।
1: महारानी, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था एक मुगल बादशाह आए थे हमारे यहां। वो अपना सारा धन हमारे सानिध्य छोड़कर हज को चले गए हैं।
0: तो इसमें चिंता की क्या बात है?
1: ना ना ना, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना आपसे, हमें चिंता नहीं, हम चिंतन कर रहे हैं।
0: वो कैसे महाराज?
1: महारानी, हमने मुगल बादशाह के अकूत धन से जल महल बनवाने का सिलसिला प्रारंभ करा दिया है।
0: महाराज, आपने बिना मुगल बादशाह की अनुमति के उनका धन इस तरह प्रयोग किया है, ये उचित नहीं जान पड़ता।
1: वो क्यों?
0: वो इसलिए

0: दुनिया के लोग समझेंगे महाराज ने मुगल बादशाह के धन को कहीं हड़प तो नहीं लिया है।
1: कदापि नहीं महारानी, हमने तो उनके धन का सार्थक उपयोग करने का प्रयास किया है। उनके लिए आरामगाह की चाक चौबंद व्यवस्था कराकर।
0: ईश्वर हमारी मदद करें।

0: बादशाह सलामत। यह है जल महल।
1: आफरी, क्या खूबसूरत नक्काशी का नमूना आपने तैयार कराया है। इसको हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये रंग बिरंगे फूलों वाले बगीचे, ये खूबसूरत तालाब, मंदिर मस्जिद का खूबसूरत मेल, इसकी हम तारीफ कैसे करें, कैसे करें? हमारे पास लफ्ज नहीं है।
0: शुक्रिया हुजूर।
1: बस हम इतना ही कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें तो अकूत दौलत के बादशाह के नाम से जानेगी, पर आपको तो तवारीख के तौर पर हमेशा हमेशा याद किया जाएगा।
2: निश्चित ही जल महल में बने मंदिर व मस्जिद हमारी कौमी एकता की अमूल्य धरोहर हैं।
3: जल महल में गोपाल भवन है, जिसमें हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, जिनके कंधों पर राम लक्ष्मण विराजमान हैं, तो वहीं चरण में पदमर्दन करते हुए आसुरी वृत्तियां हैं। उनका ये स्वरूप उस दृश्य को रेखांकित करता है जब श्री राम व लक्ष्मण को बलि के लिए पाताल में ले जाया जाता है। ये प्रतिमा अकीक पत्थर से बनी है, जिस पर चोला नहीं चढ़ाया जाता। चोला एक छोटी मूर्ति है, उस पर चढ़ाया जाता है। इस गोपाल भवन में ही एक मस्जिद है।
2: लगता है गोपाल भवन एक अद्भुत शैली का संगम है।
3: आपका कहना बिल्कुल सही है। गोपाल भवन आगे से एक मंजिल है, बगल से दो मंजिल, पीछे से पांच मंजिल है, तो समूचा जल महल अपनी नक्काशी का अद्भुत नमूना है। ब्रज यात्रा का पड़ाव स्थल डी, जो भी इसे निहारता है सहसा कह उठता है, धन्य है वो महाराज जिसने हमारे लिए इस अद्भुत धरोहर को बनवाकर छोड़ा है।
2: कहा तो ये भी जाता है कि महल में सात महल हैं, पर एक महल ऐसा है जिसमें अखाड़ा बताते हैं। पहले इसमें नाटक हुआ करते थे, अब तो अखाड़ा ही है। यहाँ पहलवान कुश्ती की रियाज करते थे। इसी अखाड़े की ही देन है कारे पहलवान, जिन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर पूरन पहलवान को हराकर इस क्षेत्र का पंचम लहराया था।
3: जब कारनामों की बात चली है तो यहाँ के लोगों की हैरत अंगेज कारनामों की लंबी फेरिस्त है, जिसे यहाँ नहीं समेटा जा सकता। डीक के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि या तो साक्षी गोपाल मंदिर है, या फिर यहाँ का सुधी समाज जो किसी को भी डीक की डींग मारने को मचलाता है।
2: डीक साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों की नगरी है।
3: धन्य है वो महाराज जिन्होंने डीक को जल महलों का निर्माण कराकर एक नई पहचान दी, और धन्य है यहाँ की वो महारानी जिन्होंने यहाँ के महाराज को एक सुंदर सृजन के लिए प्रेरित किया।
2: धन्य है ये राजस्थान की वीर भूमि, और धन्य है ये डीग नगरी जिसने हमारे भारत का गौरव

मोही डीग नगरिया भाई गई रे। अभी आपने सुना अजय कुमार शर्मा संतोष का लिखा ये रूपक। प्रस्तुतकर्ता थे श्री कृष्ण शरद। निवेदन स्वर थे नीलम सिंह जादौन, राम सरीन और साधना भार्गव के। सहयोगी कलाकार थे संदीपन विमलकांत नागर, अंजू सूद, सुरेश कुमार शर्मा, मुकेश शर्मा और इंद्रपाल शाह बॉन्ड। तकनीकी सहयोगी थे अभय श्रीवास्तव, गोपाल कृष्ण और प्रमोद कुमार गिरी। संयोजन था रामगोपाल और एम के शर्मा का। ब्रजयात्रा रूपक माला का ये रूपक आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम, लीजिए फिर से सुनिए क्रम में रूपक मोहे डीग नगरिया भाए गई रे। लेखक अजय कुमार संतोष थे और प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म सौदागर से

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म सौदागर में, और आई सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत, शब्दकार समीर, गीत आनंद मिलिंद का। फिल्म सौगंध के इस गीत को आवाज दे रहे हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथी।

गीत रानी मलिक का, संगीत अनु मलिक का, शब्द और स्वर दे रहे हैं इस गीत को कुमार सानू, अलका याग्निक, फिल्म मैं खिलाड़ी तू खिलाड़ी अनाड़ी से।

गीत रानी मलिक का, संगीत अनु मलिक का, मैं खिलाड़ी तू खिलाड़ी। जी हाँ, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थीं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम का अगला गीत लेते हैं फिल्म बेटा से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का।

उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल को सुना अभी आपने फिल्म बेटा में। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, जिसे लिया हमने फिल्म धड़कन से। आवाज़ें अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म धड़कन में अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक को। और लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया फिल्म बादशाहों से। आवाजें इस गीत में नुसरत फतेह अली खां, राहत फतेह अली खां की।

मुंतशिर के बोल संगीत तनिष्क बागची का आवाज़ें, नुसरत फ़तेह अली खां, राहत फ़तेह अली खां और साथियों की, इस गीत को लिया था फिल्म बादशाहो सोई। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म स्त्री 2 से आवाज़ें। इस गीत में मधुबंती बागची, दिव्या कुमार की।

गीत सचिन, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत सचिन का, और इस गीत को आवाज़ दे रही थी मधुबंती बागची और दिव्या कुमार फिल्म स्त्री 2 से। और लेते हैं कार्यक्रम के इस गीत का भी आनंद, जिसे लिया फिल्म गुजारिश से, आवाज़ें शैल हाड़ा और सुनिधि चौहान की।

सुनिधि चौहान और शैल हड़ा को आपने सुना फिल्म गुजारिश में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म फोकरे से। आवाजें इस गीत में सोना मोहापात्रा की और गीत मुन्ना धीमान का, संगीत राम संपत का।

सोना मोहपात्रा, और को सुना आपने अभी फिल्म फोकरे में। मुन्ना धीमान के इस गीत को संगीत दिया राम संपत ने, और एक अलग अंदाज का गीत सुनते हैं अब सोनू निगम और मीत ब्रदर्स अनजान के स्वर में फिल्म बॉस से।

सोनू निगम, मीत बरस अनजान को सुना आपने फिल्म बॉस में? FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म यंगिस्तान से ये गीत। आवाज इस गीत में अरिजीत सिंह की।

अरिजीत सिंह को सुन रहे थे आप फिल्म यंगिस्तान में FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा गीत बात और SMS। जी हाँ, आप भी सुन सकेंगे अपनी फरमाइश की फिल्मी नगमे करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225755।

जी हाँ, जुड़े हैं श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे। आपने संदेश भेजा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योतिराम यादव, ओजस्वी यादव का संदेश मिला। रामगंज मखंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, यीशु, बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू का ये मैसेज। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश का संदेश मिला और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। पाकिजा जी हाँ, ओल्ड लिसनर ग्रुप से हैं, मगनपुर झारखंड से। अब्बास आलम, अमजद अली, बेबी लाडली निशा और इनके घर के सभी सदस्य। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी जुड़े कार्यक्रम में। कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतका खोरवाल और भानु प्रकाश भी जुड़े कार्यक्रम में।

बावली महाराष्ट्र से हैं, नियमित श्रोता गजान येले, नवदीप विश्वदीप येले, अशोक शेरी बढ़नेर अकोला से हैं, अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से हैं मनमोहन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, प्रभुलाल बागरी। एक और संदेश के साथ में रविंद्र सिंह छावड़ा, समस्त छावड़ा परिवार, टैगोर गार्ड, नई दिल्ली के सुधी श्रोता।

मैसेज के साथ में है सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू मैडम, माँ कौशल जबलपुर मध्य प्रदेश के ये श्रोता। गीत बात और एसएमएस में जुड़े हैं मैसेज के साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल पिया, दिशानी और निमित आहूजा। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार। कृष्णा नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि का मैसेज मिला। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह जुड़े कार्यक्रम में। जिन स्तुति श्रोताओं का मैसेज कार्यक्रम में शामिल हो चुका है, व्हाट्सएप संदेश दोबारा न भेजें, आप भी जुड़े कार्यक्रम में। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्कीन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से सुधी श्रोता। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस खान का संदेश मिला। जज्जर हरियाणा से जुड़े बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा और अमित कुमार हैप्पी राय भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका प्रभार और मास्टर अल कबीर श्रोता में साथी हैं कार्यक्रम में। कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू और सुष्मिता साहू।

गांव गोपी की नगरिया मथुरा से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता और इनके परिवारीजन, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीयूष, कृष्णा, पीहू, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके परिवारीजन, गांव नौगरा से है कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, शिवानी, गांव कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा।

लेते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म चरस से ये गीत। आवाज़ इस गीत में आनंद बख्शी, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दीवाना रेडियो लिस्नर क्लब से जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा कार्यक्रम में जुड़े। सुधी छोटा, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, अंजू, योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बागवानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, ममता डिंगिया, कुणाल डिंगिया है बागपत उत्तर प्रदेश से, यवत माल विदर्भ से महाराष्ट्र से, संतोष खड़से और विनोद खड़से भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। गीत बात और एसएमएल मेस कार्यक्रम में एमएलबी रोड ग्वालियर से जुड़े हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण, लव्या और एसके पप्पी। इन संदेश के साथ में अगला संदेश है बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक का संदेश मिला। अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जयाल हक डावर है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, शर्मा परवार भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गर्मा शर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता का संदेश मिल चुका है। उमा शर्मा, उर्मिला, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली प्याऊ मथुरा के नियमित श्रोता।

और जो संदेश के साथ में जुड़े श्रोता है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत किसु, अर्णव और सत्यम आनंद पाकुड़ झारखंड से जुड़े हैं। सुधी श्रोता आप जुड़े कार्यक्रम में रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वडलकर, वीणा और विविधा वडलकर

अगले संदेश के साथ में है अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, लाडली पोती रौनक दीप, सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदिब, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से संदेश भेजते हैं। मंसूरी रोड रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक रमलुबना और यश मंसूरी। वरवट बुकाल बुलढाणा से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जया हागे। एक संदेश के साथ में सुधीश रोता मैसेज करते हैं, रवि कुमार, राहुल, रणकीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म डॉन से ये गीत। आवाज इस गीत में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना फिल्म डॉन में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत अनजान का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और शुरू करते हैं एक बार फिर से सिलसिला व्हाट्सएप संदेशों का।

व्हाट्सएप संदेश के साथ में जुड़े हैं सुधीर श्रोता कार्यक्रम में। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और गौरी सुरलकर अगले संदेश के साथ में। गांधी का गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा और जगदीश जौहरी जुड़े हैं कार्यक्रम में। भाई यशवंत साहू, रमेशिया हर्ष और रंश साहू कर्मा चौक लोहारी डी से संदेश के साथ में। सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू और तरुणा निका और शनिजा ये सभी जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधीर श्रोता है। मोताला महाराष्ट्र से भी संदेश लिया। विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम ये सभी हीरावाली फजिलका पंजाब के सुधीर श्रोता। आप जुड़े करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से। कानगोला गोपाल महेश्वरी, प्रवलिका विष्णुवर्धन, विघ्नेश मुजफ्फरपुर बिहार से। आरन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का भी संदेश लिया। आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हमदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश पुरोहित, शिव कुमार, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हर्षका, पायल और अकिता। कार्यक्रम में रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन जुड़े हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और आरती अरोड़ा के भी संदेश मिला। बगीरा दुर्ग से है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। रोशन लाल, कौशल्या और हेमलता भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से।

गांव जखोद राजस्थान से हैं। शंभूदयाल खटक, विमला, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमारी और कुमारी पूजा का संदेश मिला। जीके परमार, ज्योत्सना और दीपल हर्ष गांधीनगर गुजरात से, वीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम और डॉक्टर दबीरुल हसन एटा रोड जुडवावारा उत्तर प्रदेश से, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल और बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता, ये सभी सुधि श्रोता जुड़े कार्यक्रम में। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य लाड़ो, कोयल और नारक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भी जुड़े कार्यक्रम में। साई बिहार, रामपुर उत्तर प्रदेश से सरता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, श्रेय गौतम, अनन्या, ऐश्वर्य और कुश गौतम, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ये मैसेज। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से हैं जुड़े हुए। कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन और सौम्या अविरल। मैसेज के साथ मैं फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी, विशाल, शालिनी, टिवानशी और ये सभी सुधी श्रोता, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, बिट्टू सजदा और हिना कौसर, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा या छत्तीसगढ़ पलारी के सुधी श्रोता, गढ़ जुड़वारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम और मोहम्मद अयाज अंसारी।

इस गीत की फरमाइश हम तक भेजी होलीगेट न्यू साड़ी एम्पोरियम मथुरा से विनोद कुमार अग्रवाल और इनके परिवारिक जनों ने। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं गौरी शंकर पाराशर। इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर संगत कर रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी पे मनमोहन कौशिक और पर्कशन पे सूरज भान।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीक

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं गौरी शंकर पाराशर। आप सुन रहे हैं इनसे ब्रज लोकगीत।

आ जाइयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। अभी आपने सुना गौरी शंकर पाराशर से ये ब्रज लोकगीत। आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। तो आज के कलाकार हैं गौरी शंकर पाराशर। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये अगली रचना, आज मोहे ग्वालिन छल गई रे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे गौरी शंकर पाराशर। अभी आपने सुना इनके स्वर में ब्रज लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी पर मनमोहन कौशिक और परकशन पर सूरज भान। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश दुनिया की खबरें हिंदी समाचार में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में

0: अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर में बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम लेके आएंगी आपके बीच विजय लक्ष्मी। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। उड़िया भाषा में आज का ये प्रस्तुति रहेगी। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार दिन में 2:15 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा संध्या 5:08 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी संध्या 5:30 पर। आज की बात का विषय रहेगा महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर जानकारी। साथी लेंगे आनंद कार्यक्रम में आप फिल्म संगीत का

किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा खरीफ फसलों में उन्नत बीजों का महत्व। खेत बचाओ अभियान में किसानों की भूमिका, इस विषय पर चर्चा। डॉक्टर ए के गोयल से आप सुनेंगे वार्ता, बकरी पालन व्यवसाय कितना उपयोगी, इस विषय पर ओबी आधारित भेंट वार्ता सुनेंगे आप। खेती के 5 तत्वों का फसल के लिए रखरखाव, डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत से बात करेंगे दीपक कुमार गोस्वामी। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दीपक शर्मा से कथा बाल लीला। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशगान, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगना। कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच विजय लक्ष्मी।

0: घर अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। तो परेशान है कि क्यों कह रही हो बढ़िया? गर्मी पड़ रही है। अरे बहनाओं, गर्मी तो बहुत जोर की पड़ रही है। नेकू काम करवे को उठे तो पसीना टपर ही टपर चोचा जावे और गीले है जावे, ऐसा लगे नहा लिए। और कभी कभी तो ऐसा मन करे अभी नहाया मैं, तो नहाले में तो सर्दी गर्मी है जावे। क्योंकि भैया गर्मी में से निकल के अगर तुम ठंडे पानी से स्नान करोगे तो सर्दी गर्म तो होनी है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। गर्मी तो है, पर जब गर्मी को नींबू की शिकंजी थोड़ा नमक डाल दो ताकि भैया पसीना निकल रहा हो तो कमजोरी ना आए। छाछ है, सत्तू है, सुपाच्य हल्को दरिया है, खिचड़ी है, ऐसे भोजन लें। तले गरिष्ठ भोजन से जा मौसम में बचें, क्योंकि बहुत गर्मी है। और अपना ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हमसे जुड़े जितने वो काम हैं बिने हम कैसे करेंगे। और काम की बात करें तो काम हमें बड़े सोच समझ के करना है, क्योंकि भैया के में ना छोटा या बड़ा कछु काम कीजिए, काम करवे से पहले विचार कीजिए। बिना विचारे घर काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो चाहे तो वो काम घर को होए और चाहे वो हमारे काम धंधे को होए, हमें हर काम सोच समझ के करना है। और सोच समझ के बात करें और काम की बात कर रहे हैं तो सबने लगे काम करें तो कुछ पैसा आए, चार पैसा कमावें तो घर अच्छे से चले। और हर व्यक्ति सुचारू घर चलाएवे के काजे दाम कमाएवे की कोशिश करे कि मैं ना दाम उधर बैठी रहे, दाम करें सब काम। तो दामन की तो सबन को ही ज़रूरत है। हर महिला सोचे कि हम अपने घर में भागीदार बने, कमावें तो अपने बालकन को भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो क्यों ना हमारी दादी नानी ने जो हमें सिखाया है आज हम भैया अपने काम को हिस्सा बना लें। अरे अचार मुरब्बा बनाए भी की बात कर रही हूँ बहनाओं, खूब हर सीजन में तरह तरह की साग भाजियाँ में जहाँ सीजन के फल सब साग भाजी अलग है, तो क्यों ना हम हर सीजन को जो भी साग भाजी है वह को संरक्षण कर वह को अचार बना में मुरब्बा बना में और कुटीर उद्योग लगाए के काम चलाए में। पैसा चाहिए कुटीर उद्योग लगाए हुए में। अरे बहनाओं जब हम एक कदम उठाएंगे ना प्रयास को तो फिर हमें रास्ता चारों तरफ से दिखाई देंगे, हम सहायता ले सकें। तो बहनाओं जब हमें छोटे अपनी मन बना लेंगे तो काम वो बढ़ेगा। और पहले अपने काजे तो करके देखो कि हम कितने सफल हैं। जब हम अपने काजे करेंगे और सफल होंगे तो आगे के बड़े विस्तार से करेंगे वह काम है। और बहनाओं जब पैसा आएगा तो आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो मन करेगा गुनगुनाएगा, ऐसे तारी बजाएगा, नाच के चलेंगे, मटक के चलेंगे। क्योंकि पैसा से चाल बदल जावे, निगाह बदल जावे बहनाओ, तो नजरिया मत मार है, आओ लोकगीत को आनंद ले में।
1: यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उचित मात्रा में खाद पानी दवाई

तो अभी हमारी बहना प्रेमानंद भैया के स्वर में आनंद ले रही हती जा सुंदर से लोकगीत को, नजरिया मत मारे मर जाऊंगी। अरे हमारे ब्रजवासी तो अपने कन्हैया की निगान के दीवाने हैं, बिने तो अपने प्रभु के दर्शन नित प्रति चाहिए और तानो भैया देनो, क्योंकि हम बाके सखा हैं और हमें जई बात को अभिमान है कि हम ब्रज में हैं।

0: और कन्हैया हमारा है और हम कन्हैया के हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता ब्रजवासिन को है कि कन्हैया हमारा है तो राधा रानी हो हमारी है। और हम अपने बालकन में हूँ कन्हैया और राधा रानी ही देखें। जब बालक खिलखिलाए के हंसे अपने बारन को आगे पीछे करे तो मैया बाप गदगद है जा में लगे कि ऐसा लग रो है छोटा सा लड्डू वारो लाला घुटुअन डोल डोल के अपने प्यारे प्यारे दांतन ने दिखाई के अपने बारन ने ऊंचो नीचो कर रहे हो है। भाव इतना ज्यादा है कि बालिकान में राधा रानी तो छोटे से बालकन में कृष्ण कन्हैया दिखे और माता पिता की धुरी जय और घूमती रहे। वो सदैव चाहे कि हमारे बालकन पे कबो कोई कष्ट नहीं आए कोई परेशानी बाधा नहीं आए और तरह तरीके के उपाय न सोचते रहे पूछते रहे बहन ऐसा कहा करें कि हमारा बालक हष्ट पुष्ट है जाए कबू बीमार ना पड़े कैसे वाय भोजन का नाम है पोषण के काजे कोई नई बात हुई तो बताओ निरी बहन पूछे तो बहनाओ आओ डॉक्टर अभिलाषा कुलश्रेष्ठ से जाना है बच्चन के विकास और पोषण के आधुनिक तरीके। तो बहनाओ आओ सुनो।
1: यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उचित मात्रा में खाद पानी दवाई और स्वस्थ वातावरण दिया जाए तथा समय पर निराई गुड़ाई और उचित देखभाल की जाए तो समय आने पर एक विशाल तथा मजबूत वृक्ष बनकर दूसरों का सहारा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार शिशु को उसकी शारीरिक जरूरत के अनुसार आहार उचित मात्रा में पौष्टिक तत्वों वाला दिया जाए व उचित देखभाल की जाए तो वे स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे अधिक होती है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भकाल में शिशु का विकास माता के द्वारा लिए गए आहार पर निर्भर करता है। माता की मानसिक व शारीरिक अवस्था के अलावा माता के भोजन व्यायाम रहन सहन तथा वातावरण का प्रभाव गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है कि स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। अगर माँ में रक्तहीनता है तो शिशु न केवल दुर्बल होगा बल्कि उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास भी उचित रूप से न हो पाएगा। यदि गर्भवती स्त्री को पूर्ण संतुलित भोजन दिया जाए तो शिशु पूर्ण स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट उत्पन्न होगा तथा माता को भी रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। गर्भावस्था में स्त्री को दूध व इससे बनने वाले पदार्थ हरी सब्जी फल दालें सलाद अनाज उचित मात्रा में दी जानी चाहिए। मांसाहारी स्त्रियों को अंडा व मांस भी उचित मात्रा में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रोटी चोकर सहित आटे की पकी हुई देनी चाहिए। इससे उन्हें कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अधिक मसालेदार चटपटा भोजन नहीं देना चाहिए। बासी भोजन न दें। कठिनाई से हजम होने वाले तले भुने अधिक गरिष्ठ भोज पदार्थ भी न दें। भोजन सदैव संतुलित हल्का जल्दी पचने वाला और ताजा ही दें। गर्भवती स्त्री एक साथ पूरा भोजन अधिक मात्रा में न ले। पूरे भोजन को कई बार में थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले। रात्रि को 8 बजे तक भोजन कर ले जिससे भोजन को अच्छी तरह पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। और इसी के साथ गर्भवती स्त्री अधिक समय तक भूखी भी न रहे। भोजन सादा सुपाच्य संतुलित पौष्टिक और ताजा ही दें तो गर्भस्थ शिशु का विकास संतुलित होगा जो कि आगे चलकर स्वस्थ शिशु के रूप में जन्म लेगा। जन्म के बाद बालक का शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसके साथ ही साथ मानसिक विकास सांवेगिक विकास सामाजिक विकास भाषा का विकास और चारित्रिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। शिशु का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है लेकिन धीरे धीरे विकास की गति कम होती जाती है। बालक के शारीरिक विकास को तो देखा जा सकता है।

लेकिन मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, साथ ही साथ सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषा का विकास भी होता रहता है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर ही बच्चे की सभी क्षमताओं, भावनाओं, जरूरतों तथा विचार का मुख्य आधार होता है। संतुलित और पौष्टिक आहार पर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही निर्भर करता है। बच्चे के शारीरिक विकास का ज्ञान उसकी लंबाई और भार में अंतर आने से पता चलता रहता है। शिशु के जन्म के 2 वर्ष तक उसके विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। किशोरावस्था से पूर्व तक यह गति थोड़ी धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में विकास पुनः तीव्र गति से होने लगता है। किशोरावस्था पूर्ण होने से परिपक्व होने तक यह गति फिर धीमी हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग का विकास अपने विशेष नियम के अनुसार होता है। विकास की गति कुछ भी हो, लेकिन शरीर के सभी अंगों का विकास निरंतर होता रहता है। गर्भावस्था के समय में बच्चे की हड्डियों में मुलायमपन कार्टिलेज के कारण होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी हड्डियों में खनिज लवणों तथा कैल्शियम के ग्रहण करने द्वारा कड़ापन आता जाता है। बच्चे की हड्डियों का अच्छा विकास पौष्टिक आहार पर निर्भर करता है। आयु के बढ़ने के साथ शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। बच्चे के सभी अंग उचित आकार और अनुपात में बढ़ते हैं। बच्चे की आयु बढ़ने के साथ उसका मोटापा कुछ कम होता जाता है। जन्म से लेकर युवावस्था तक बालक की लंबाई तथा भार में निरंतर ही वृद्धि होती रहती है, लेकिन यह गति सदैव समान नहीं रहती है। बालकों की लंबाई पर माता पिता, वंशक्रम, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बालक कितना लंबा होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। नवजात शिशु एवं प्रौढ़ व्यक्ति के शारीरिक अनुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। शरीर के सारे अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्वता के बाद सभी अंगों की वृद्धि समान अनुपात में होती है। शारीरिक विकास में सबसे पहले सिर के अनुपात में वृद्धि होती है, फिर धड़ तथा सबसे बाद में पैर तथा हाथों के अनुपात में परिवर्तन होता है। बालक के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में दांतों का विकास होता है। इसके बाद अस्थाई दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और उसके स्थान पर स्थाई दांत निकलने लगते हैं। इस समय दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बालक के शरीर के आंतरिक अंगों के विकास के अंतर्गत स्नायुमंडल का विकास, मस्तिष्क का विकास, पाचन प्रणाली का विकास, श्वसन प्रणाली का विकास, हृदय व रक्त परिभ्रमण प्रणाली का विकास, मांसपेशी और चर्बी का विकास उम्र के बढ़ने से युवा होने तक होता ही रहता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का भी विकास होता है और बालक की मानसिक आयु उनके जन्म से किशोरावस्था के अंत तक बढ़ती है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए मानसिक विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानसिक और शारीरिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति में स्नेह, ममता, सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि आंतरिक वृत्तियों से प्रभावित होता है। नवजात शिशु संसार में एक बिल्कुल असहाय अवस्था में जन्म लेता है। बच्चा अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता और परिवारजनों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर कुछ संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, खुशी। जैसे जैसे बालक का शारीरिक तथा

0: बौद्धिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे अन्य संवेग भी विकसित होने लगते हैं। बालक के सीखने का संवेगात्मक अनुभव पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शिशुओं का मानसिक विकास भी तेजी से होता है, इसलिए उसे उचित पौष्टिक तत्वों वाला भोजन देना चाहिए। और प्रारंभ में बच्चे की वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो उसको प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए देनी चाहिए। इसके अलावा उसको उचित कैलोरी वाला भोज्य पदार्थ या भोजन देना चाहिए, जिससे उसे बढ़वार के लिए शक्ति मिल सके और रोगों से लड़ने की भी शक्ति मिल सके। शिशुओं की सामान्य वृद्धि के लिए खनिज लवण भी मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोह लवण है। कैल्शियम व फास्फोरस अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं और लोह लवण से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जो माता का दूध होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन गाय के दूध में लोह लवण की कुछ कमी होती है। शिशुओं को सभी विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। माता के दूध में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, गाय के दूध में यह कम होता है। विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप में और कॉडलिवर ऑयल की बूंदें दी जा सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट से बच्चे को अपने कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है, जो कि आलू, केला, अनाज आदि में पाया जाता है। बालक के उचित पोषण हेतु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही साथ उचित मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। जल की कमी से शिशु को कब्ज हो जाता है। इन सभी बातों के साथ शिशु के विकास के लिए और उचित पोषण के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत बच्चों के वस्त्र, बच्चों के सामान खेलने के या बच्चों के रहने का कमरा, बच्चों का भोजन, इन सब में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: तो बहनों देखो कितनी अच्छी बात बताई डॉक्टर अभिलाषा कुलश्रेष्ठ बहन ने कि हमें अपने बालकन को कैसे ध्यान रखना है ताकि उन्हें अच्छा पोषण मिल सके। खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन ये सब तो चाहिए ही चाहिए, संग में जल की मात्रा पर भरपूर होए, संग में साफ सफाई का वातावरण होए कि मैं ना साफ सफाई से आदि रोग भाग जावे। तो सफाई का महत्व तो हम सभी जाने जा समय, और जहाँ समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि हमें जल का महत्व मालूम पड़ गया है। बहनाओं अगर प्यास लग रही हो ना, डुकास लग रही हो, तो बूंद बूंद पानी कितनी तरह से जावे। अगर हम बाहर हैं तो पानी संग में आए तो तब सोचें कि घर पे कितना पानी यूं ही व्यर्थ बहा दें, आज हम एक बूंद के काजे तरस रहे हैं। और बास समय हमें एहसास हुए कि ना हम जल बचाएंगे, पर फिर भूल जावें क्योंकि हमारा मनुष्य स्वभाव है। पर हमें पल पल अच्छी बातन को स्मरण करते रहना चाहिए, अच्छी बातन ने दोहराते दोहरावे से वो बात हमारी आदत बन जावे। तो साफ सफाई से रहें, जल को बचाव करके रखें क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहनों देखो जल के संग जो जल है वो वृक्षन क्यों याद दिलावे कि भाई जल से वृक्ष सींचे जाएं, पर वो वृक्ष सदैव हमारे ही काम आवे। आज जब धूप में चले ना और जब हमारी चांद पज रहे तब हमें लगे कि काश पेड़ लग रहा हो तो कितनी छाया मिलती, और कहूँ हमें दूर पेड़ दिख जाए तो हम भाग भाग के वहीं तक पहुँचें कि न खड़े है के शांति ले ली मैं। और बहनों सवन नहीं अनुभव करो है कि वह पेड़ की छाया में कितना आनंद आवे। तो भाई पेड़ के नीचे बैठ के बड़ी मीठी मीठी बात याद आवे, झूला याद आवे, अरे भक्तन ने राधा रानी याद आवे कि राधा रानी हम पे तो अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखियो। तो भैया भगवान की कृपा सदैव अच्छे कर्मन से बनेंगी, तो अपने कर्म करते रहो, अपने ठाकुर जी को, अपने इष्टन को मनाते रहो और आओ आनंद लें जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

मैं नजरिया डारो, आशु बहन के सुरीले से स्वर में हमने आनंद लयो, जब बहुत सुंदर से लोकगीत को। और हम सभी राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी हम पे अपनी कृपा सदैव बरसाती रहियो, और हमारी बहनों सब भगवान पे भरोसा रख के काम करो और अच्छा ही होएगा, क्योंकि दिन के बाद रात होवे और रात के बाद सवेरे, तो समय को चक्र तो चलता ही चल रहा है। अब देखो जी, घड़ी भी चलती चल रही है और कह रही है कि अब विराम देवी को समय आ गया है। तो हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। तो बहनों फिर मिलेंगे।

मैंने सुना ही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी विजय लक्ष्मी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया भाषा से आज ये प्रस्तुति गीतकार KC पाणिग्रहण।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: केऊं नाम धरी
1: डाकीबी
2: तुमकु
1: तुमे जे
2: सर्वनाम
1: केऊं नाम धरी
2: डाकीबी तुमकु
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला आंद्रा लिख लो।
2: आलोक तुमकु नपारे देखाई तुमे जे देखाओ ताहारे आलोक तुमकु नपारे देखाई तुमे जे देखाओ ताहारे
1: तुमे जे
2: बेढ़ीच सबुरी भीतरे बाहरे तुमे जे बेढ़ीच कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुहा होई तुम्हें झरी पड़ा परा
1: केते नयनर कोणरु
2: लुहा होई तुम्हें
1: झरी पड़ा परा
2: केते नयनर कोणरु
1: हस होई पुणी
2: फूला परी फुट केते जे नरम अधरु
1: हस होई पुणी
2: फूला परी फुट केते जे नरम अधरु केऊं नाम धरी
1: डाकीबी तुमकु
2: तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
2: एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
2: केऊं नाम धरी डाकीबी तुमकु 1 2 3 4

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश

0: इस तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म स्वदेश से, आवाज इस गीत में AR रहमान की,

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा और साथियों को फिल्म वीर ज़ारा में।

लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों के स्वर में अभी वीर ज़ारा फिल्म से ये गीत सुना आपने। आई सुने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म परदेश से। आवाज़ इस गीत में ए हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, उदित, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण।

अभी आपने सुना ए हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और साथियों को फिल्म परदेस में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। पर आइए सुने राहत फतेह अली खां को फिल्म आजा नशले में।

अभी आपने सुना फिल्म आजा नचले से, ये गीत गीत पीयूष मिश्रा का, संगीत सचिन सुलेमान मर्चेंट का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। हमारी दूसरी सभा संध्या 5 बजे तक आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 5:10 बस होने ही वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा रहा है?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे।

0: इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एसएलआरएम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद एसएलआरएम सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक एसएलआरएम सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं। उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए और यहां पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 रुपए प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए,
0: यस,
1: ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत

0: एक दो महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे। उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15 20 टोकन 30 टोकन 40 50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8 10 8 10 टोकन कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3 4 दिन इकट्ठा करके 5 7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए, तो उसके बदले में तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना,

0: से बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: असर
0: कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि
0: पड़ा,
1: हुई है
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, न केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल, वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब
0: इसका
1: में?
0: जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज्ड रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि से मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22, तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं,
0: हाँ,
1: उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: लोकेशन पे, ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सके हैं।
0: इस तरह की योजना कैसे, बच्चों का सपोज दैट बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप

0: से इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है, उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं, फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है, जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव, बच्चों को चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पर भी कुछ,
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी, तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं, तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां
0: से भी सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमने किया दिल्ली केंद्र से, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा.

0: International Airport, where dreams take off.
1: मुलाकात लिखी जाए अधूरी सी कहानी को, नई बात लिखी जाए जो पल वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गए, वो फिर से दिल की किताब से जुड़ जाए। ज़रा ठहर कर ख्वाबों में एक नज़र तो डालो, क्या पता किसी मोड़ पर वो बीता हुआ वक्त फिर से मिल जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ खुशबू, और सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में।

सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हर रोज की तरह एक नई चर्चा के साथ आज हम उपस्थित हैं और आज है 27 जून। जी हाँ, हम सभी इस दिन को बहुत अच्छे से जानते हैं। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम यानी MSME, ये दिवस आज हम मना रहे हैं। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो छोटे और मध्यम उद्योगों के महत्व को समझाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक प्रगति में इनके योगदान का सम्मान करना है। ये केवल व्यापार नहीं है साथियों, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और नवाचार का आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के बड़े शहरों तक छोटे उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर लोगों को रोजगार और नए अवसर प्रदान करते हैं। छोटे कदमों से ही बड़ा मुकाम बन जाता है। मेहनत का हर सपना एक दिन पहचान बन जाता है। जो खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है, वही उद्यमी देश की नई उड़ान बन जाता है। आज हम लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हर वर्ष 27 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के महत्व को पहचान दिलाना, नए उद्यमियों को प्रेरित करना और रोजगार सृजन में उनकी भूमिका को सम्मान देना है। सूक्ष्म उद्यम यानी बहुत छोटे स्तर पर शुरू होने वाले उद्योग या व्यवसाय यानी कि MSME, इसको हम पूरी तरह से जान लेते हैं, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। लघु उद्यम जिनका कारोबार और निवेश सूक्ष्म उद्यमों से बड़ा होता है। मध्यम उद्यम यानी कि अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर संचालित उद्योग जो अधिक लोगों को रोजगार भी देते हैं। इन उद्योगों में कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर, डेयरी, मशीन निर्माण, आईटी सेवाएं, कृषि आधारित उद्योग और अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं। साथियों, ये दिवस दुनिया को ये संदेश देता है कि उद्योग ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये उद्योग न केवल रोजगार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देते हैं। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इसके जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं और इनके सामने जो समाधान है वो कुछ इस प्रकार हैं। उद्यमियों को आसान ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देना, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना, यानी कि छोटे छोटे सपनों में बड़ी उड़ान छिपी होती है। हर मेहनती हाथ में नई पहचान छिपी

शेरे पंजाब का नाम अमर रहेगा, हर दिल में उनका सम्मान अमर रहेगा। न्याय, वीरता और सेवा की जो राह दिखा गए, भारत के इतिहास में उनका गौरव सदा अमर रहेगा। जी हाँ साथियों, हम सभी भली भांति परिचित हैं शेरे पंजाब यानी कि महाराजा रणजीत सिंह। साथियों, आज उनकी पुण्यतिथि है, 27 जून को हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसी दिन यानी कि आज के ही दिन 1839 को लाहौर में उनका निधन हुआ था। वे भारत के महानतम शासकों में से एक थे और उन्हें शेरे पंजाब के नाम से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, गुंजरावाला एक गांव में हुआ। पिता का नाम महा सिंह था, माता का नाम राजकौर, और 1801 में उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और पंजाब के महाराजा बने। उन्होंने पंजाब की बहुत सी मिसलों यानी कि सिख संघों को एकजुट होकर के शक्तिशाली राज्य की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और आसपास के अनेक क्षेत्रों में अपने राज्य में उन्होंने वो सारे क्षेत्र मिला लिए। उनका शासन न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी सेना खालसा फौज अपने समय की सबसे अनुशासित और आधुनिक सेनाओं में से मानी जाती थी। इन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए यूरोपीय सैन्य अधिकारियों की भी सहायता ली। उनके दरबार में सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों का सम्मान और समान अवसर मिलता रहा। के दशक में उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उन्हें स्ट्रोक सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हुई और 27 जून 1847 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। आज के दिन गुरुद्वारों में अखंड पाठ और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। उनके जीवन और आदर्शों पर व्याख्यान और संगोष्ठियां आयोजित होती हैं। श्रद्धालु उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों स्थानों पर उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके प्रेरणादायक विचार थे सभी धर्मों का सम्मान करना, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष

शासन देना, राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को सर्वोच्च रखना, इसके साथ ही प्रजा की कल्याण को राजा का सबसे बड़ा धर्म मानना। महाराजा रणजीत सिंह केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक, कुशल प्रशासक और धार्मिक सौहार्द के प्रतीक भी थे। उनकी पुण्यतिथि हमें साहस, न्याय, एकता और राष्ट्र सेवा के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देती है।

साथियों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन नया अध्याय है। जो सीखते हुए आगे बढ़े वही सबसे ज्यादा कामयाब हैं।

साथियों, हौसलों की उड़ान कभी कम मत होने देना, सपनों की पहचान कभी गुम न होने देना। मुश्किलें तो आएंगी हर कदम पर है दोस्त, बस अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। इसी के साथ अब युववाणी कार्यक्रम को यही हम संपन्न करते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है

0: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती, और रात 10 कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ फसलों में उन्नत बीजों का महत्व और खेत बचाओ अभियान में किसानों की भूमिका विषयों पर। इसी कार्यक्रम में आप एक वार्ता सुनेंगे, विषय होगा बकरी पालन व्यवसाय कितना उपयोगी। इस बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर ए.के. गोयल। इसी कार्यक्रम में आप एक ओबी आधारित भेंट वार्ता भी सुनेंगे, खेती के 5 तत्वों का फसल के लिए रख रखाव। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, इनसे बातचीत करेंगे दीपक कुमार गोस्वामी।

शाम 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कथा बाल लीला, कथाकार होंगे दीपक शर्मा। संध्या वंदन का समय रहेगा शाम 6:45।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी लेकर हाजिर होंगे शाम 7:31 पर। कुछ देश गान आप सुनेंगे शाम 6:10 पर और रात 8:20 पर।

ये था आज कार्यक्रम होने वाले। श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कार्यक्रम आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नीलमणि शर्मा।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैया को राम राम। भैया, जैसे कि हम सभी जाने हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां खरीफ फसल किसानन की आय का प्रमुख स्रोत है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास प्रमुख खरीफ जो फसल हैं। इन फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत बीजन का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। उन्नत बीज वैज्ञानिक विधि से विकसित करे जाए हैं जहाँ अंकुरण क्षमता ज़्यादा होवे है और ये रोग और कीटन को बेहतर सामना कर सके हैं। ऐसे बीजन से फसल की वृद्धि अच्छी होवे है, उत्पादन बढ़े है और किसानों को ज़्यादा लाभ मिले है। कई उन्नत किस्म जो हमें किस्म कम पानी और प्रतिकूल

0: मौसम में हूँ, बेहतर उपज देवे में सक्षम हो में है। भैया, उन्नत बीजन के उपयोग से फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गए हैं, जाते बाजार में अच्छी कीमत मिले। संग ही जामे खाद और दूसरे संसाधनन को जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो गए, जाते खेती अधिक लाभदायक बने हैं। यानी प्रत्येक किसान भैया को प्रमाणित और उन्नत बीजन को ही प्रयोग करना चाहिए, जाते न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानन की आय में वृद्धि होगी और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। भैया, जब हम अपनी खेती किसानी की बात करें, खरीफ फसल में उन्नत बीजन की बात करें हैं, तो देखो अपने प्रधानमंत्री जी ने खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान अभियान को कृषि भूमि के संरक्षण पर कई अवसरों पर जोर दिया है, जाको मुख्य संदेश यही रहे है कि स्वस्थ माटी, जल संरक्षण और आधुनिक खेती ही समृद्ध किसान की पहचान है। बिन्ने अपने संबोधन में किसान भैया से आग्रह करो है कि माटी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खेती करें, पानी की बचत के लिए प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप को सिद्धांत अपनाएं, रासायनिक उर्वरकन को संतुलित उपयोग करें और प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा दें, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीकन का उपयोग करके उत्पादन बढ़ावें, भूमि और पर्यावरण को संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए खेती लाभदायक बनी रहे। भैया, खेत बचाओ अभियान को मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखो, माटी को कटाव रोको, जल को संरक्षण करवो और खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनावो है। जहाँ अभियान की सफलता में किसान अभियान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गए है। किसानन को अपनी भूमि की नियमित देखभाल करनी चाहिए और माटी की जांच कराए के आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकन को प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशन को अत्यधिक उपयोग करने के बजाय जैविक खाद, हरी खाद और गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र अपनाए थे माटी की उर्वरता बनी रहे है और रोगन का प्रकोप भी कम हो गए है। जाके अलावा किसान वर्षा जल को संरक्षण करें, खेतन में मेड़बंदी करें, पेड़ पौधा लगावें और माटी के कटाव को रोकवे के उपाय अपनावें। समय पर उन्नत बीजन का उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकन को अपनाए के वे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके हैं। यानी संक्षेप में हम कहें तो प्रधानमंत्री जी को मानना है कि यदि किसान माटी, पानी और पर्यावरण को संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक खेती अपनाएंगे तो खेती अधिक टिकाऊ होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानन की आय में हूँ वृद्धि होगी। तो भैया, जब हम किसानन की आय में वृद्धि देखेंगे तो अपने आप ही अपनी जो खेती है हमें लहलाती हुई दिखेगी। और जाके अलावा अब जैसे कि अपना जो कार्यक्रम है आगे बढ़ावे के पहले हम जो अपने खेती के 5 तत्व हैं, भूमि है, जल है, बीज है, उर्वरक है और कृषि उपकरण है, इन 5 संसाधनों को उचित रखरखाव करवे ते फसल स्वस्थ रहवे है, उत्पादन बढ़े है और किसानन को ज़्यादा लाभ हो प्राप्त होवे है। जी हाँ, यही विषय है आज की भेंटवार्ता को, वो भी आधारित है खेती के 5 तत्वों को फसल के लिए रखरखाव। डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत से भेंट कर रहे हैं दीपक गोस्वामी।
1: अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ढेंचा उगा लीजिए और ढेंचा की खाद को जोत दीजिए, ये क्या विचारधारा?
2: देखिए, विचारधारा ये है, रिसाइकलिंग का है। जो मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या, खारीपन की रेह की समस्या, नीचे जमीन में लवण है, वो पानी के साथ भाप बनने के ऊपर नीचे से खिंच के आते हैं कैपलरीज से, और पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और नीचे लवण यानी साल्ट, किसान की भाषा में बात कर लें तो रेह, वहीं छूट जाती है, धीरे धीरे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके जमीन की सतह पर पड़ी रहती है। किसान समझता है कि नहीं साहब, इसीलिए जुताई जरूरी है, हल्का पानी जरूरी है ताकि घुल के वो फिर नीचे चली जाए। तो ये जो लवण है आने वाले समय में हर खेत में अगर किसान ने सावधानी नहीं बरती तो जमाव होना बंद हो जाएगा, अगर जम भी आएगा तो पहले पानी के बाद लोट लगा जाएगा, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रेह की वजह से। तो आपसे निवेदन है कि खेत में पोषण फसल चक्र अपनाएं जिसमें हरी खाद का समावेश जरूर करें, और हरी खाद के लिए या तो सनविया है, सनई, और दूसरा ढेंचा, ये इतने बढ़िया है, दोनों दलहनी है और इनका बायोमास 1 वर्ग मीटर में 3 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम तक मिल जाता है 1 वर्ग मीटर में। तो ये मान के चलिए कम से कम आप इसकी 1.5 गुना ताकत बढ़ा देते हो कार्बन की। अगर हर साल बुवाई करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर पर्याप्त मात्रा

0: में जीवांश हो गया तो आपको रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता ही खत्म हो जाएगी।
1: तो अगर इसको मोटी भाषा में, किसान की भाषा में बात करें, तो यह है कि हमको उन्हीं पंच तत्वों की शरण में पहुंचना पड़ेगा जिनको हमारे दादा, हमारे जो पुरखे थे, अपनी खेती की प्राथमिकता में
0: जी
1: रखते थे। जैसे हमारे जो अवयव हैं खेती के, हमारा जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, इसको हम एक अपनी खेती की विशेष मांग के अनुरूप खेती में प्रयोग करना शुरू करें और जैविक खेती की तरफ हम लोग वापस लौटें।
0: देखिए, पूर्णतः जैविक करने के लिए तो फिर आप नेचुरल फार्मिंग है, वहाँ भी जीवाणु बढ़ाने की बात कही गई। जब हमारा फ्री का मजदूर है जीवाणु, उसको हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, गहरी जुताई, उसके बाद रोटावेटर की मथाई से केंचुआ मार दिया, तो ये अंधाधुंध से हुआ। अब हम उस चीज़ का साइड इफेक्ट आज देख रहे हैं। ये वही खेत हैं जिनमें बहुत अधिक सेवाएं की गई हैं ताकि अधिक उपज मिले, लेकिन आप ये भूल गए कि जैसे कहावत है ना, देसी घी नहीं खाओगे तो चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर खा के आप कितना जियोगे। तो खेती को हम ये रासायनिक उर्वरक माने चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर दे रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट तो हमें मिलेंगे। एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रहे हैं, ये ज़मीन में संरचित होकर नीचे ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी संक्रमित कर रहे हैं। हमारी भूमि भी संक्रमित हो रही है, साल्ट की मात्रा, चाहे रासायनिक की बात कर लें या लवण की बात कर लें, से बढ़ रही, जिससे हमारा जमाव प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में किसान के पास शुद्ध यानी बढ़िया पानी नहीं है, जिससे, क्योंकि लवण युक्त तो पानी है, किसान कांच के गिलास में देखता है कि साहब पानी में कुछ नहीं है। अब जब आप मीटर लगाएंगे, टोटल डिजॉल्व साल्ट मेजर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने पीपीएम टोटल डिजॉल्व साल्ट है, यानी पीपीएम। फिर भी मैं एक आपको सामान्य जानकारी के तौर पर, किसानों को, जिन सिंचाई स्रोतों का पानी 1000 TDS से कम है, यानी पीपीएम से कम है, वो खेत के लिए लगा सकते हैं। अगर इससे जितना ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए उतना खेत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि 1000 TDS का मतलब, जबकि डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है 150 से लेकर 300 TDS तक का पानी आप पीजिए, यानी TDS का मतलब है पीपीएम में मेजर करते हैं इसको, और खेती के लिए अधिकतम 1000 तक का। लेकिन अगर ज़्यादा TDS है आपके खेत के अंदर, ज़्यादा पीपीएम मात्रा में है टोटल डिजॉल्व साल्ट, तो आप कोशिश करिए कि अधिक लवण को सहन करने वाली फसलें एवं उसकी प्रजातियां बोएंगे, तो आपको थोड़ा उत्पादन मिलेगा, अन्यथा खेत में डिपॉजिट होता रहेगा। पक्के 4 बीघा में आप 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा हो जाता है, जिसमें 5 लाख लीटर पानी लगाते हैं। अगर बात करें, हमने एक सिंचाई की और 1000 TDS है, तो 5 क्विंटल खार यानी लवण चले जाते हैं। और कहीं आपके खेत का पानी जो सिंचाई करते हैं 2000 का हुआ, तो 10 क्विंटल खार, और आपने गेहूं की फसल करी, कितना पानी लगाते हैं, 5, तो आप उम्मीद करिए 50 क्विंटल लवण जा रहा है आपके खेत में। क्या खेत सहन कर पाएगा? 3 साल के बाद खेत क्या बोलेगा? ना भाई, किसान कहता है कि साहब जमा बहुत पर्याप्त नमी थी। नमी नहीं होती है, वो लवण की पसीजन होती है, उसको नमी समझ बैठता है और बुवाई करता है। तो और इसलिए जब तक दाने को नमी नहीं मिलेगी, फूलेगा नहीं, तब तक कि दाना उगेगा नहीं यानी जमेगा नहीं।
1: अब डॉक्टर
0: तो
1: साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, किसान भैयन को आप मूलतः संक्षेप में क्या संदेश देना चाहो हमारे मथुरा के किसान भैयन को?
0: संक्षेप में यही संदेश देना चाहते हैं कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश करें, हरी खाद का उपयोग करें, और आप जिसको कूड़ा कचरा समझ के फेंक रहे हैं, वो आपके लिए खेत का च्यवनप्राश बन सकता है। अगर गड्ढे में सड़ा के और खेत में डालेंगे, और डालते समय सूरज नहीं, शाम को डालिए, सुबह तक खेत में जुताई करके मिला दीजिए, तो वही आपके खेत का च्यवनप्राश काम करता है, जिसको आप भूरा कहते हैं, आपके लिए भूरा होगा। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सड़ा के खेत में डालेंगे, तो वो भूरे गोबर की या भूरे की खाद होगी। इतना कर लेंगे तो आपके खेत की उम्र बढ़ जाएगी, आपकी लागत कम होगी, और जो आप सरकार को दिनों दिन कोसते हैं कि साहब फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, तो सरकार की पॉकेट में इतना नहीं है कि आपको अंधाधुंध दे। आने वाले समय में हमारे खेत जो खराब हो रहे हैं, वो हम ही सुधार सकते हैं, वो उसकी चाबी किसान के पास है। वही फर्टिलाइजर अगर आपको बाजार में या खाद, गोबर की खाद को 250-300 का बैग मिले, तो बखूबी आप खुशी खुशी लेकर आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपके घर का है, आप रिसाइकलिंग करिए, और आप खेत में इसके अलावा उर्वरक का चक्र अपनाइए। अगर DAP नहीं मिल रही है, तो फास्फोरस के लिए दूसरा तत्व तो है, SSP है, NPK, आप उनको डालिए। बीज का चक्कर अपनाइए, अगर ये वाली प्रजाति हमने इसमें गेहूं की बोई, अगली बार दोनों खेतों के बीज बदल दीजिए। इसके अलावा

0: दूसरी फसल ले लीजिए उस खेत में, फसल का चक्कर अपनाएं। और कम से कम मथुरा जिले के लिए तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन है कि साल के अंदर हरी खाद का समावेश एक बार जरूर करें। अगर उस खेत को टाइम नहीं मिलता है तो कहीं दूर के खेत में, दूसरे खेत में उगाएं और उस खेत में ट्रॉले से लेके डाल के बिछा के और हैरो से कटाई करके, कुछ ध्यान रखिए ढैचा की हरी खाद पानी के अंदर ही जुताई करनी है, सूखे में जुताई करने से उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
2: खेती के पांच तत्वों का फसल के लिए रखरखाव, यह विषय पर अभी आपने वो भी आधारित भेंट वार्ता सुनी। डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत के संग भेंट करता है दीपक गोस्वामी। भैया, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हम सभी के मन को आनंद और भक्ति से भर दे में है। इनकी नटखट शरारत, माखन चोरी और मटकी फोड़वी की लीला आज भी लोकगीतन के माध्यम से जीवंत हैं। आओ इन्हीं मनमोहक बाल लीलान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर तो ये मधुर लोकगीत आपको सुनवाए रहे हैं, गाए रहे हैं रवि जोशी।

0: तभी अभी आपने आनंद लियो जा लोकगीत को गाए रहे रवि जोशी। एक बार फिर बकरी पालन व्यवसाय कितना उपयोगी जा विषय पर वार्ता, वार्ताकार हैं डॉक्टर ए के गोयल।
1: भाइयों एवं बकरी पालकों, भारतीय संदर्भ में बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। समाज में बकरी पालन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ने के कारण बकरी पालन एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। इसमें जुगाली करने वाले पशु जैसे बकरी व भेड़ के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में बकरियों का वार्षिक योगदान 14 करोड़ से ऊपर आंका गया है। सन 1950 से बकरी का सघन मांस पशु के रूप में उपयोग होने के बावजूद इसकी सालाना वृद्धि दर अन्य पालतू पशुओं की तुलना में सर्वाधिक है। वर्तमान में बकरियों की कुल संख्या 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जो विश्व की कुल बकरी जनसंख्या का लगभग 5वां भाग बैठती है। बकरियां इस देश में 95% गांव में पाली जाती हैं तथा 15 लाख परिवार इसको अपनी रोजी रोटी का साधन बनाते हैं। देश में बकरियों की 20 प्रामाणिक नस्लें हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी कई नस्लें पाई जाती हैं, जैसे जमुनापारी व बरबरी। प्रदेश में इनकी कुल संख्या लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर है। बकरी मांस तथा दूध के द्वारा पोषण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त चमड़ा, पश्मीना रेशा तथा खाद जैसी मानवोपयोगी सामग्री उपलब्ध करा के रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करती है। बकरी व्यवसाय विशेष रूप से कृषि योग्य भूमि एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमिहीन, सीमांत एवं लघु कृषकों एवं गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की आजीविका का मुख्य साधन है। इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा उत्पादन क्षमता को देखकर विगत कुछ वर्षों में बकरी पालन व्यवसाय स्तर पर भी अपनी बुनियाद मजबूती से जमा रहा है। इस क्षेत्र में बड़े उद्यमी तथा प्रगतिशील किसान भी आगे आ रहे हैं, जिससे बकरी मांस, दूध तथा उसके विभिन्न उत्पादों एवं खाल के निर्यात की अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। अन्य पालतू पशुओं की तुलना में बकरी एक ऐसा पशु है जो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी उत्पादन देने में सक्षम है। इनकी 3% से अधिक सालाना वृद्धि दर इनकी उच्च प्रजनन क्षमता व पर्यावरण में अनुकूलन को दर्शाती है। बकरी ही एक ऐसा पशु है जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में सहयोगी है। बकरी पालन व्यवसाय को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा तथा महामारी में एक बीमे के रूप में देखा जा सकता है। बकरी पालन के अनेक फायदे हैं, जैसे बकरी का मनुष्यता अन्य पशु प्रजातियों के लिए अयोग्य पदार्थों को उच्च कोटि के पोषक पदार्थ जैसे मांस, दूध, रेशा, चमड़ा व बाल में परिवर्तित करने की क्षमता रखना, बकरी का विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपने को ढालने की क्षमता रखना, इसी गुण के कारण यह देश के सभी भौगोलिक भूभागों में पाई जाती है। कम उम्र में बच्चा देने लगना, एक बार में एक से अधिक बच्चा देने की क्षमता रखना, जल्दी जल्दी बच्चा देने की क्षमता रखना, बकरी मांस का समाज के सभी वर्गों द्वारा बिना किसी धार्मिक बंधन के उपयोग किया जाना, बकरी उत्पादों का सीर विपणन होना। वर्तमान परिस्थितियों में कृषि योग्य भूमि घट रही है और चरागाह भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़े पशुओं का पालना संभव तथा मुनाफे का व्यवसाय नहीं रहा है, अतः बकरी पालन जैसा छोटा पशु पालने के लिए सबसे उपयुक्त है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन व्यवसाय ज्यादा मुनाफे का व्यवसाय होता जा रहा है। इसका एक और लाभकारी पहलू यह भी है कि इसे बच्चे तथा महिलाएं बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। इसका आकार छोटा होने के कारण इसके रखरखाव पर कम खर्चा आता है और नुकसान की संभावना भी कम रहती है। यह पशु देश के शुष्क, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि कार्य तथा दूसरे पशुओं को पालने के सीमित अवसर हैं। इन इलाकों में छोटे व सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों की भी काफी बड़ी संख्या है। विभिन्न पशु प्रजातियों पर हुए अनुसंधानों से यह तथ्य सामने आया कि बकरी भेड़ की अपेक्षा 40 से 160% ज्यादा तथा गाय भैंस से 130% ज्यादा लाभ देती है। एक भैंस तथा 5 बकरियों को 5 वर्ष तक पर पालने पर बकरियों से शुद्ध मुनाफा लगभग 9,000 रूपये प्रतिवर्ष तथा भैंस से करीब 4,500 रूपये प्रतिवर्ष होता है। मथुरा जनपद में बारबरी बकरी प्रमुखता से पाई जाती है। इन पर किए गए अनुसंधानों से यह पता चला है कि एक बकरी से एक साल में अर्ध सघन वृद्धि से पालने पर सभी खर्चों को निकालकर शुद्ध मुनाफा करीब 800 रूपये होता है, जो इनके दूध, मांस, खाल और पैदा हुए बच्चों के विक्रय से प्राप्त होता है। इस आधार पर यह आंकलन किया गया कि बारबरी बकरी के व्यावसायिक स्तर पालने की अभाव संभावनाएं हैं। इसके लिए मुख्यतः सघन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह भी पता लगा है कि बकरी व्यवसाय पर लागत से 30 से 35% तक शुद्ध मुनाफा हो सकता है अगर हम उसको वैज्ञानिक विधि से

0: पाल है। बकरे और बकरी का पालन भी चयन भी उतना आवश्यक है जैसा कि और सभी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बकरियों के खान पान में रातव, चारा, खनिज लवण आहार के प्रमुख घटक हैं। बकरियां बरगद, गूलर, छोकरा, झरबेरी, देसी बबूल, सुबबूल, अंजन, अगस्त, नीम, खेजड़ी, अड्डू, जामुन, जंगल जलेबी, पांखड़, पीपल इत्यादि देसी वृक्षों की पत्तियां व झाड़ियों को अत्यंत पसंद करती हैं। उपलब्धता के आधार पर इन बकरियों को इनको खिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह वृक्ष नहीं है उस स्थिति में उनको बरसात के मौसम में लगाकर हरे चारे की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। बकरियों को सघन, अर्धसघन तथा विचरण पद्धति से पाला जा सकता है। तरीके का चुनाव संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्याप्त आकार में चरागाह उपलब्ध होने पर विचरण पद्धति को अपनाएं। अगर पर्याप्त चरागाह न हो तो अर्धसघन पद्धति को अपनाया जाए। दोनों साधनों के अभाव में सघन पद्धति से बकरी पालन करें। बकरियों के लिए बाजार में उपलब्ध रातव का प्रयोग किया जा सकता है। बकरी पालक चाहें तो उसे स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। 100 किलोग्राम रातव तैयार करने के लिए 50 किलोग्राम मक्का, जौ या गेहूं, 22 किलोग्राम चोकर, 20 किलोग्राम मूंगफली, 5 किलोग्राम शीरा, 2 किलोग्राम खनिज लवण तथा 1 किलोग्राम नमक मिलाएं। अर्धसघन पद्धति में प्रतिदिन 250 ग्राम पथ बकरी के हिसाब से रातव दें। गर्भावस्था के 30 माह में इसकी मात्रा 25% बढ़ा दें। प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए 250 से 300 ग्राम अतिरिक्त रातव दें। प्रजनन काल में प्रयुक्त होने वाले बकरे को रातव की मात्रा 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन बढ़ाकर दें। प्रत्येक पशु को 2 से 3 किलोग्राम हरा चारा तथा 1 किलोग्राम अरहर चने का भूसा भी प्रतिदिन दें। संतान उत्पत्ति के लिए जनन एक आवश्यक क्रिया है। इसकी समुचित जानकारी के अभाव में बकरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना संभव नहीं है। बकरी व्यवसाय का सबसे अहम उद्देश्य है कि बकरी अपने जीवन काल में अधिक से अधिक बच्चे दें। प्रत्येक नस्ल की बकरी एक निश्चित उम्र तथा शारीरिक भार ग्रहण करने के पश्चात ही गर्भाधान के योग्य होती है। मांस उत्पादन के लिए पाने जाली बकरियां सामान्यतः 12 से 15 माह में पहली बार मां बन जाती हैं, जबकि दूध के लिए पाने जाने वाली बकरियां 20 से 25 माह में पहली बार बच्चा देती हैं। भारतीय नस्ल की बकरियां पूरे साल गर्मी के लक्षण प्रकट करती रहती हैं अगर उनको गर्भधारण न कराया जाए। बकरियों में गर्मी रहने की अवधि 24 से 36 घंटे तक होती है तथा इसी अवधि में एक बीजू बकरी से गर्भाधान कराने पर उनमें गर्भ ठहरता है। बकरियों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उतनी आवश्यक जितनी की अन्य जानकारी। बकरी भी अन्य पालतू पशुओं के समान विभिन्न रोगों से ग्रसित होती हैं, जिनके मुख्य कारक जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी होते हैं। जीवाणु जनित रोगों में जहरीले दस्त, निमोनिया, खुरों का रोग, संक्रामक, गर्भपात, गलघोंटू, आंतों की टीबी तथा थैनेला रोग वयस्क बकरियों में तथा निमोनिया व दस्त बच्चों में पाए जाते हैं। विषाणु जनित रोगों में चेचक, मुहाना, खुर एवं मुहपका तथा एक अत्यंत घातक बीमारी जिसे पीपीआर कहते हैं प्रमुख हैं। बाह्य तथा आंतरिक परजीवी भी अनेक रोगों को पैदा करते हैं। सामान्य रूप से विभिन्न रोग पशुओं पर तभी आक्रमण करते हैं जब पशु कमजोर होता है, जिससे उसकी रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। इन रोगों में से कुछ रोग जैसे गलघोंटू, खुरपका एवं मुहपका, जहरीले दस्त तथा पीपीआर के टीके पास के पशु चिकित्सालय से लगवा लेने चाहिए। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए धन और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। ऋण के लिए अनेक वित्त पोषण संस्थाएं आगे आ रही हैं। बकरी पालक जिस इलाके में यह व्यवसाय शुरू करने जा रहे हों, वहां के राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक व ग्रामीण बैंकों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीमा कंपनियों से भी संपर्क कर बकरियों का बीमा अवश्य कराना चाहिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, जो मथुरा जनपद के फरक कस्बे के निकट स्थित है, इसके द्वारा व्यावसायिक बकरी पालन पर सभी तकनीकों पर 10 दिन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ष में 4 से 5 बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान में यह प्रशिक्षण 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण में देश के विभिन्न भागों से प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेने आते हैं। बकरी व्यवसाय से जुड़े जो लोग यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वे समय से अपना पंजीकरण कराकर अपने व्यवसाय को अधिक सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा बकरी पालन पर प्रयोजन निर्माण में बकरी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
1: बकरी पालन कितना उपयोगी, अभी आपने जो वार्ता सुनी, वार्ताकारी डॉक्टर ए के गोयल। भैया एक बार फिर लोकगीत को आनंद गा रहे हैं दामोदर शर्मा।

तो भैया अभी आपने सुनो ये लोकगीत गा रहे दामोदर शर्मा, क्योंकि हम घड़ी की सुई ते बंधे भाई हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आज आपको जो जानकारी अपनी खेती में अपनाए के लाभ प्राप्त करेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए विषय के संग। तब तक के लिए सभी बहन भैया को राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

सोनू निगम और साथियों को आपने सुना चार धाम फिल्म में। अगला फिल्मी भजन हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। इस भजन को गाया है अलका याग्निक और विजय प्रसाद ने।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में आपने सुना सूर्यपुत्र शनिदेव फिल्म का ये भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कथा बाल लीला। कथाकार हैं दीपक शर्मा।

तो हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपके ताई भगवान की बाल लीलान में सर्वप्रथम पूतना को मोक्ष वर्णन करे हैं। सुखदेव जी के में हैं हे राजन, नंद पथ बचो सोरेन मृषत विचिन्तयन, हरिम जगाम शरणाम पाता गम संकेत। नंद जी ने वसुदेव के वचन पर विश्वास करके उत्पातन की आशंका से भगवान को ध्यान करते हुए गोकुल चल दिए हैं। इधर कंस ने क्या कियो कि बाल घातनी पूतना नाम की जो राक्षसी है या कु विकराल राक्षसी को गोकुल में भेज दियो है। यह बालकन को मार रही है, इधर उधर घूम रही है। एक दिन जो है काय याने अपनी माया से अत्यंत सुंदर स्त्री को रूप धारण कियो है और गोकुल पहुंच गई है। याने नाना प्रकार के वस्त्राभूषण और चमेली के पुष्पन से अपनो ऐसो श्रृंगार कियो मानो साक्षात लक्ष्मी जी पधार रही हों। एक हाथ में कमल लेकर के अपनी मंद मुस्कान से कटाक्ष पात्रन से सबको मोहित कर दियो याने। और जो है काय देखते ही देखते गोपिन में प्रवृत्त है गई है और गोपिन के संग में जो है काय ये चल रही है और चलते चलते सीधे नंद भवन के अंतपुर में पहुंच गई। वहां जाने अपने तेज को तो छपाए लियो है और जे प्रत्येक के कमरान को नंद भवन के इनको खोल खोल के देख रही है कि कौन से में बालक कोई मिल जाए मुकुल। इधर नंद ने क्या कियो, यशोदा मैया ने जो है क्या देखी कि ये पतो नहीं कौन सी जो है क्या स्त्री आई है, मालूम पड़े कोई गोपी पास के गांव की आई है या से याने कछु नहीं टोको या के ताई। इधर ये बाल घातनी जो है काय डोल रही है और डोलते डोलते याने भगवान को देखो है और भगवान को देख करके ये मुस्कराए गई। भगवान ने भी या के ताई

देखो है और अपने नेत्रारविंदन को बंद कर लियो है। चराचरात्मा निमिलते एक क्षण पूतना ने धीरे से भगवान को गोदी में उठाए लियो है। क्यों जी, भगवान ने अपने नेत्रन को क्यों बंद कियो? भगवान ने सोचो कि अगर मेरे यासे नेत्र मिल जाएंगे तो जो है क्या मेरी यासे प्रीति है जाएगी। प्रीति नैनन योग्यतः, फिर प्रेमी को अनिष्ट करना अनुचित है। या लिए भगवान ने अपने नेत्रारविंदन को बंद कर लियो है। अथवा भगवान ने शिव को ध्यान करवे लगे, क्यों के भगवान या बिस्के ताई तो आप ही ग्रहण कर सको। अब तो जो है क्या है भगवान ने ध्यान करो है शिव के ताई। भगवान ने सोची कि कोई अच्छी वस्तु को दर्शन करना चाहिए, लेकिन ये तो जो है क्या है दुष्ट बाल घातनी राक्षस ही है, या को दर्शन योग्य नहीं है। अथवा भगवान ने अपनी बालकाल की सार्थकता को रखते हुए डर के मारे भी नेत्रारविंदन को बंद कर लियो है। मेरी दृष्टि से स्वभावत ये है कि भगवान ने कही कि या के संग में जो कोई और राक्षस आए हुए हैं, अगर मेरी दृष्टि पड़ गई तो मेरे भय से कहीं भाग नहीं जाएं और उत्पात नहीं मचाएं, मेरे पास स्वयं खींचे चले आएं। या लिए भी भगवान ने अपने नेत्रारविंदन को बंद कर लियो है। अथवा माता को भाव प्रदर्शन कर रही है, क्यों ये पूतना जो राक्षस ये है का है ये अपने स्तनन पे विष लगाए के आई है। भगवान को दूध पिलाए भी की इच्छा से आई है कि मैं दूध पिवाऊंगी और भगवान को मरण है जाए। या लिए भगवान ने सोची कि ये काम तो मेरी माता को कर रही है और माता को मार भी मैं लज्जा उत्पन्न नहीं है जाए। या लिए भगवान ने अपने नेत्रारविंदन को बंद कर लियो है। मात्र भाव दर्शकास्त्या सुकर्त कबंधे लज्जानुपत्ते इति विश्वनाथ। रोहिणी और यशोदा केवल खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो स्तब्ध है गई हैं। ऐसी माया है या पूतना की कि वह भी नहीं देख रही हैं, क्योंकि पूतना ने जो है काय बालक को भगवान लाला को जो है काय गोदी में उठाए लियो है, लेकिन कोई को रोकवे को साहस नहीं है। रोए पूतना ने म्यान में जैसे बंद तलवार को निकालें ऐसे तीक्ष्ण वाली भयंकर रूप है गयो है और जाने भगवान के ताई अपने स्तन को पान कराए हुए। और तो लाला जो है काय कह भी लगे, लाला को भी रोष आए गयो, अरे मैं तो दूध पीऊँ धारूष्ण गैयन को और श्यामा गैयन को, मक्खन दही खाए भी बारो, अच्छे पदार्थन को खाए भी बारो, और ये राक्षसी दुष्टा जो है काय मेरे ताई दूध पिलाए रही है। ऐसो मन में विचार करके दोनों हाथन से या कि स्तनन को पकड़ लियो है और पकड़ के जो है काय खींच भी लगे हैं, दूध को पान कर भी लगे हैं। इधर भगवान शिव ने आए करके सबरो विष पी लियो है। इधर भगवान ने जो है कहा जब जात के दूध को दोहन करो है, दूध के दोहन करते करते या कि प्राणन को खींच भी लगे हैं। ये तो जो है काय बड़े प्रेम से रुदन कर भी लगी है, चिल्लाए भी लगी, सा मुंच मुंचाल मती प्रभाषिणी प्रतिरोध रहो, अब तो हे पूत ना पूत ना ना पूत छोड़ छोड़ बस, अब तो ये मर्म पीड़ित है करके पूतना चिल्लाए भी लगी है, पृथ्वी पे गिरवे लगी है, चिल्लाए भी लगी है। यही से या को नाम जो है काय पूतना है गए हुए। अब तो जाने भीषण शब्द से पर्वतन सहित पृथ्वी नक्षत्र सहित आकाश मंडल सब कंपित है गए हैं, पाताल एवं दिशाएं भी गुंजायमान है उठी हैं, गोप और गोपी मूर्छित है करके पृथ्वी पे गिर पड़े हैं। वेदना से पूतना के जो नेत्र हैं काय वे बाहर निकली आए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं या कि छटपटाए करके या कि प्राण पखेल उड़ गए। अब तो या कि जी क्या दशा भई है कि यानी राक्षसी रूप भयंकर धारण कर लियो है और जे पृथ्वी पे धराम से गिर पड़ी है। अब या कि जो काया है काय वे छह कोस लंबी काया है गई है, गांव के बाहर जाए करके कंस के बगीचा में गिरी है, वहां के सबरे वृक्ष जे है काय चूर्ण है गए हैं। अब तो गोपिन ने और माता यशोदा ने दौड़ करके या कि वक्ष स्थल पे खेलते भाई नंद लाला को उठाए लियो है। भगवान ने के नाम से या को उठाए के लाए हैं, अरे आज तो हमारे लाला को पुनर्जन्म भयो है, पतो नहीं जी राक्षसी हमारे लाला को क्या करती। अब तो भगवान को लाए करके
जो है।

कराए, गौमूत्र से स्नान कराए हुए, गौमूत्र से स्नान कराए के भगवान के विभिन्न नाम अनुकूल लेकर के भगवान के अंगन की रक्षा करिए, भगवान को झाड़ो दियो है। इंद्रियाणी हृषिकेशो प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पति चित्तम मनो योगेश्वर वतु। आया प्रकार सुखदेव जी के में है, हे राजन या प्रकार रक्षा पूर्ण विधि है गई है। यशोदा ने लाला के ताई दूध पिवायो के देखूं मेरो लाला स्वस्थ तो है, मैया को दूध पियो है, लाला थक गए। दूध पीते ही खेम लाला को नींद आ गई है, माता यशोदा ने इनको सुलाए दियो है। उधर नंद आदि गोप जो है काए मथुरा से लौट के आए हैं, वहाँ आए करके उनने क्या देखो है गोकुल आए के रास्ता में ये पूतना को विशाल शरीर देखो, अरे ये तो बड़ो विचित्र शरीर है, आश्चर्य में डूब गए। अरे वसुदेव जी सही कह रहे कि ये कंस जो है काय नाना प्रकार के उत्पात कर रहे हो है, मुँह तो लाला की चिंता है रही है। अब तो गोपन ने क्या करो है कि फरसा ले आए और पूतना के अंगन को काट काट करके या कि चिता बनाए दई है और जलायो। अब देखो यह पूतना की जो चिता जल रही है वहाँ को जो धुआं है काय वो इतनो सुगंधित है कि वहाँ से सारो गोकुल जो है काय सुगंधित है उठो है। क्यों ये भगवान के ताई जाने दूध पिवायो और भगवान ने या को माता की गति प्राप्त करी है और भगवान ने या को गति मुक्ति जो है गई है वासे जो है का या कि धुआं में भी सुगंधित उत्पन्नता है गई है। और भगवान को जो भक्ति जो है का है, भक्ति से भगवान को कछु वस्तु भेंट करे वाकू हमेशा सदगति प्राप्त है जाए। हे राजन जो मनुष्य भगवान के या बाल चरित्र को पूतना मोक्ष को श्रद्धा से श्रवण करे वाको भगवान के चरणार विंदन में जो है का है प्रेम अनुराग है जाओ करे। गोविंदे लभते रतिम, क्यों जी ये पूतना है कौन? ये पूतना राजा बलि की जो है का है पुत्री है रत्नमाला नाम की। एक बार भगवान ने जो है का है वामन अवतार लेकर के या बलि किया जब भिक्षा लेवे गए हैं तो उनको देख करके ये रत्नमाला बड़ी प्रभावित भई है और या के मन में ये भावना उत्पन्न भई के मोज भगवान को जो है का है अपनो स्नेह प्रकट करके या को वक्षस्थल को दूध प्रदान करना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने या के पिता को नाप लियो है तो वही समय या के मन में क्रूरता उत्पन्न है गई है कि या के जो है का है अब तो यह बालक को दूध नहीं विष पिलाए के मानो चाहिए।

0: वृंदावन बिहारी लाल की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया। कथा का शीर्षक था बाल लीला। कथाकार थे दीपक शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्धनगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और

0: सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट प्वाइंट्स लगाने का फैसला

0: लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट प्वाइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
3: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। साथियों, हर सुबह नई होती है, रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। टूटे हुए सपनों से भी नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। गिरकर संभलना ही जिंदगी है, हार कर चलना ही तो जीत है। जो आज है वो कल बदल जाएगा, बस खुद पर विश्वास रखना। दुनिया साथ दे या ना दे, खुद का साथ कभी मत छोड़ना। मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, एक दिन मुकाम तुम्हारा ही होगा। हर पल को मौका समझो, जिंदगी खुद तुम्हें संवार देगी। तो जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी आपको खुद संवार देगी और हर सुबह कुछ न कुछ नया लेके आती है। स्वस्थ होंगे आप सभी और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, इसी आशा के साथ अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो सबसे पहला जो संदेश हमें मिला है, आप हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमनी, पुरंजय, कविता, गोविंद, सिमरन और प्रजापति फैमिली हमसे जुड़ी हुई है। अगला संदेश किसी भी

गीत के लिए भेजा है हमें कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मोहाली से, टीरी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज कालका। किसी भी गीत की फरमाइश के लिए अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। ये संदेश हमारे पास आया है जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचेत सरवद, प्रथमेश प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख का। मस्तानपुरा से अनंता भगत, इन्होंने एक बार पुनः हमें मैसेज भेजा है, तो कृपया करके आप बार बार मैसेज ना भेजें। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा हमसे जुड़े हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद हमसे जुड़े हैं झारखंड से। पश्चिम बंगाल से हमारे पास ये संदेश आया है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का ये संदेश हमें मिला है। किसी भी गीत के लिए ये फरमाइश हमें मिली है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस की। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का हम तक ये संदेश पहुंचा है। तो श्रोताओं, अब ले लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का नाम है और इसको गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव का हमारे पास ये संदेश आया है। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का। सोहन जोशी भाटापारा से इन्होंने हमें ये मैसेज भेजा है। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल हमसे जुड़े हैं और

सुखरी कला धमधा ग्राउंड से ये संदेश हमें मिला है अमित जंघेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल का। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी शेखावत का ये मैसेज हमें मिला है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आराध्या सुरलकर हमसे जुड़े हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश पायल, बेबी वैदेही और हंसिका जोशी, इनके साथ हैं अमृता शर्मा और अंकिता जोशी। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा और रामेकर परिवार हमसे जुड़ा है अमरावती महाराष्ट्र से। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता का ये संदेश हमें मिला है और अगला संदेश देवशंकर तामुरिया का हमें मिला है। इनके साथ हैं अजय, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये संदेश हमें लिखा है। राधिका प्रभा देवी और अल कबीर हमसे जुड़े हैं। नांदुरा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक हमसे जुड़े हैं। नासिक से विशाल, सोनाली, समर्पण, भक्ति, गवली हमसे जुड़े हैं और ये मैसेज हमें मिला है। गार्डन रोड पैठर से बाबा साहेब सरगर, ज्योति, शुभम और महेश सरगर। उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं। रजुद्दीन खान, रिजवान, हुशान, मुमताज, राविया, फिरोज और अली हसन का ये संदेश हमें मिला है। हाथरस से किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी का ये मैसेज आया है। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान हमसे जुड़े हैं। सादुल शहर से राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का ये संदेश हमें मिला है। पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा का ये मैसेज हम तक पहुंचा है और ये संदेश हमें मिला है। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का। खंडवा से योगेश गुजराती और अभय गुजराती का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। रश्मि झरना और भरत कुमार हमसे जुड़े हैं राजकोट गुजरात से। आदिनाथ बाग पाटिल, अमोल बाग, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख का संदेश हमें मिला है। ग्राम पेंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श और आलोकिक चंसोलिया का ये संदेश हमें मिला है। नारायण हागे कमल, दिव्या, जय हागे का संदेश हमें मिला है। बरकट बड़काल बुलडाणा से किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए ये श्रोता हमसे जुड़े हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष। नसवा वाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, निवृत्ति और संजय चौहान का ये संदेश हमें मिला है। श्रोताओं सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

कुमार सानू लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी होली गेट न्यू साड़ी एम्पोरियम मथुरा से विनोद कुमार अग्रवाल और इनके सभी परिवारीजन। गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीयू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके सभी परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, सूरज, शिवानी। गांव कुमुदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। अगला संदेश हमें मिला है शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधाना खुराना। ये संदेश हमें मिला है सोनाली, सुरेश नारंग, आशु, शेख, अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, रेशमा और राज एसडी कुशवाहा का, सहारनपुर चंदर नगर से। नांदुड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे हमसे जुड़े हैं और ये संदेश हमने लिया है करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विग्रेश, कैलाश फूलमाली, दीपक, समर और वैदिका फूलमाली का संदेश हमें मिला है अहमदपुर खैगांव खंडाला से। नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और इनके साथ हैं संगीता जाधव। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। पसंद करने वाले अगले श्रोता हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले, प्रकाश जैन लातूर से, संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन का हमें संदेश मिला है और अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का ये संदेश हमें मिला है। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, देवाश्री, मेघा और अनुराग मोहन का ये संदेश हमें मिला है। अगला संदेश पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफिया, अनस, आयजा, आल्फिया और इनके साथ हैं हुसैन कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान। ये संदेश हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश, पायल, इन सभी का संदेश हमें पुनः प्राप्त हुआ है। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल और अनुराज बेनारा का हमें संदेश मिला है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा का संदेश मिला है श्री गंगानगर राजस्थान से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज और एमएस अब्बासी बुलंदशहर से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता, निष्ठा सोलंकी, शौर्य और मनु सोलंकी हमसे जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा का संदेश हमें मिला है। नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राजबहादुर, शंभू, रजनी, सागर बाबू का संदेश हमें मिला है राजनगर बिहार से। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का, आप अगले फरमाइश करता है वैष्णव कॉलोनी सनावास से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गंज डुंडवारा से

आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया अंसारी का ये संदेश हमें मिला है। और अगली फरमाइश करता है उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहाटा। महाराष्ट्र से अगला संदेश हमने लिया है नारायण गायकवाड़, दयानंद और ओमकार साई गायकवाड़ का।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा के स्वरों में आप सुन रहे थे निकाह फिल्म का ये गीत। इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वरों में आपने सुना बाजीगर फिल्म का ये गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कुर्बानी।

कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

मीनाक्षी कुंदू और साथियों को आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म के कुछ गीत।

साजन फिल्म का अभी आपने गाना सुना, स्वर दिया था पंकज उधास ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में इसी फिल्म का अगला गीत।

श्रोताओ, 1991 में रिलीज हुई साजन एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो प्यार, दोस्ती और त्याग पर आधारित है। ये एक अनाथ लड़की की कहानी है जो अपने दोस्त की प्रेमिका से प्रेम करने लगता है और खुद को पीछे खींच लेता है।

श्रोताओं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे लॉरेंस डिसूजा, लिखा था रीमा राकेश नाथ ने, प्रोड्यूस किया था सुधाकर बोकाड़े ने, और इस फिल्म में जो कलाकार थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान। और इन प्यारे प्यारे गीतों को संगीत से संवारा नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इस में जो कहानी होती है वो होती है अमन यानी कि संजय दत्त, जो कि एक गरीब और दिव्यांग अनाथ बच्चा है, जिसे एक अमीर आदमी यानी कि कादर खान गोद लेता है और अपने बेटे आकाश यानी कि सलमान खान की तरह पालता है। बड़े होकर आकाश एक रंगीला और अमीर लड़का बनता है, जबकि अमन एक संवेदनशील, शर्मीला और प्रसिद्ध शायर बन जाता है, जो सागर नाम से कविताएं लिखता है।

आकाश की मुलाकात पूजा यानी कि माधुरी दीक्षित नाम की लड़की से होती है और जो कि दोनों में प्यार हो जाता है। दूसरी ओर पूजा सागर यानी कि अमन की कविताओं की बहुत बड़ी प्रशंसक होती है और उसे बिना देखे उससे प्रेम करने लगती है। यानी कि इस कहानी में त्रिकोणीय प्रेम दिखाया जाता है। आकाश अपने दोस्त अमन को पूजा के बारे में बताता है और अमन को ये नहीं पता होता कि जिस पूजा से आकाश प्रेम करता है वही पूजा उसकी कविता की दीवानी है।

श्रोताओं, क्लाइमेक्स कुछ इस तरह से होता है। गलतफहमी पैदा होती है और पूजा को लगता है कि सागर ही आकाश है। बाद में सच्चाई सामने आती है। आकाश को पता चलता है कि पूजा वास्तव में अमन से प्रेम करती है। फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जहां आकाश अपने दोस्त अमन की खुशी के लिए दोनों को मिला देता है और वहीं उनकी शादी हो जाती है।

0: इसी के साथ अब शाम।
1: ये प्यार तो तुमसे
0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: मेरा दिल भी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव

0: चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच

0: और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्टी अनिल मिश्रा रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स फॉलोइंग द डोनेशन एम्बेजलमेंट केस. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. लीजिए पेश है कार्यक्रम सुहाने तराने.

काला बाजार। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट

0: कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहां पे कैसे भूकंप आते हैं, वहां पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहां पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहां पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसकी बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की

0: जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि ये सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्म

0: निर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही

0: पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहां से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता

0: अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी एक गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज की वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और
1: जी
0: जो जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूं, मैं तो मेरा पूरा डेटा है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी
0: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ

0: तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Sri Dulal Roy.
1: He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए।

0: हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने

0: प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship.